FMVO 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। आकाशवाणी सुन रहे सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 हुए हैं। इसके साथ ही हमारी आज की सभा का आगाज होता है।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं इस भक्ति गीत के साथ जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने।

कार्यक्रम भक्ति धारा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और लीजिए अब पेश है पुरुषोत्तम जलोटा की आवाज में ये प्यारा सा भक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति श्रुति सडोलीकर की आवाज में।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति धारा अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और अब वक्त है कार्यक्रम चिंतन का। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: संस्कारों का बड़ा महत्व है।

0: संस्कारों से विभूषित होने पर व्यक्ति का मूल्य और सम्मान भी बढ़ता है। संस्कारों से जीवन संवरता है। जिस प्रकार उत्तम कोटि का हीरा जब खदान से निकाला जाता है, वो मिट्टी से सना होता है। पहले उसे साफ किया जाता है, फिर उसे तराशा जाता है। तराशने के बाद उसकी कटिंग की जाती है, तब वो हार में पहनने के लायक होता है। इस प्रकार अपरिष्कृत हीरे को संवार कर उपयोगी बनाया जाता है। ये संवारना ही संस्कार है। संस्कारों के द्वारा ही उसकी कीमत बढ़ती है। संस्कार के बिना उसकी कीमत कुछ नहीं है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना संवार कर मनुष्य के उपयोग में आती हो। उदाहरण के लिए, हम जो अन्न खाते हैं वो खेतों में जैसा उपजता है वैसे ही हम नहीं खा लेते। अन्न के दाने निकालकर उसे साफ करके चक्की में पीसकर आटा बनाते हैं, फिर उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। ये सभी संस्कार हैं। मनुष्य संस्कारों से ही वासना, तृष्णा और अहमता से बचा रह सकता है। मानवीय गरिमा को बनाए रहने के लिए चिंतन में उत्कृष्टता और चरित्र में आदर्शवादिता का समावेश अपरिहार्य है। मनुष्य कर्तव्यच्युत अनित रत होकर अनर्थ का मार्ग अपनाता है तो निश्चय ही विनाश का मार्ग अपनाता है। ऐसे में विनाश की विभीषिकाएं खड़ी हो जाती हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार हमारे मन पर एक प्रकार का संस्कार छोड़ जाता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र संस्कारों से ही पहचाना जाता है। अतः प्रारंभ में बालक में जिन संस्कारों की नींव डाली जाएगी, आगे चलकर उनका जीवन उन्हीं के अनुरूप बनता चला जाता है। कहा गया है कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। माता पिता, वातावरण और साथियों के आचरण का बालकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि अपने माता पिता के आचरणों से संस्कारित होकर बालक अपने देश का नाम ऊंचा करता है। भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, माता शकुंतला के कारण वीर बना। इसी प्रकार शिवाजी को वीर शिवाजी बनाने में उनकी माता जीजाबाई का पूरा पूरा योगदान था। ध्रुव अपनी माता के संस्कार और प्रेरणा से ही इतने ऊंचे हो सके। वीर अभिमन्यु के जीवन में माता पिता के आदर्श संस्कारों का प्रबल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार संस्कार परंपरा द्वारा ही मानव में देवत्व का उदय देखा गया है। विश्व में जितने भी संत महापुरुष हुए वे सभी उच्च संस्कारों का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद, बालक प्रहलाद के संस्कार सर्वविदित हैं। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, संत गुरु नानक देव, समर्थ स्वामी रामदास आदि संत महात्माओं ने अपने आदर्श संस्कारों से समाज को संस्कारित करने का अनूठा कार्य किया। अतः उत्तम और श्रेष्ठ संस्कार प्रत्येक बालक का, प्रत्येक व्यक्ति को अपनाने चाहिए, जिसमें माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, बड़ों का आदर करना, प्रातः उठकर उनका आशीर्वाद देना, ईश्वर को याद करना और विश्व लोक कल्याण की प्रार्थना करना, सूर्योदय के पहले उठकर योग व्यायाम करना, दीन दुखियों की सेवा करना, व्यर्थ निंदा न करना, किसी को दुखी नहीं करना, स्वाध्याय करना, अच्छे विचारों का विस्तार करना, अच्छा सोचना और करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का व्यवहार में अपनाने का क्रम अवश्य ही बनाना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने जीवन में देवत्व जगाने के लिए षोडश संस्कारों की परंपरा विकसित की, जो मानव के गर्भ में आते ही प्रारंभ हो जाती हैं। पुसंबन संस्कार, जन्मदिन, नामकरण, विधारंभ, जनेऊ, पाणिग्रहण, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास, मरणोत्तर संस्कार आज भी प्रचलित हैं, जिन्हें योग्य महापुरुष ही संपन्न करवाते हैं और आवश्यक विचार देकर मनोभूमि बनाते हैं, जिससे मानव में जीवन जीने की कला आने लगती है, जो समर्थ गुरु के सानिध्य में पल्लवित होती है और मानव में महानता का विकास, देवत्व का विकास होने लगता है और मानव अपने जीवन के उद्देश्य, अर्थ, धर्म और आनंद इच्छित वस्तु की प्राप्ति में नहीं वरन अपने से महान के लिए समर्पण करने में है। ये महानता उच्च स्तरीय आदर्शों में, महान व्यक्तियों में, देश में, समाज में अथवा परमात्मा में हो सकती है। जब तक अपना सर्वस्व किसी महान उद्देश्य के लिए अर्पण नहीं कर दिया जाता, जब तक शुद्रता के बंधनों से छुटकारा नहीं पा लिया जाता, तब तक मनुष्य निरंतर अशांत उद्धत ही बना रहेगा।
1: आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, सीखें नई तकनीक, बढ़ाएं अपनी खेती का धन। रायसेन में सजेगा ज्ञान का ये मेला, उन्नत कृषि महोत्सव, सुनहरा ये मौका। 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान रायसेन में 300 से ज्यादा स्टॉल, जानकारी हर ज्ञान में, 24 प्रशिक्षण सत्र, सीखो नए तरीके, खेती बने आसान, बढ़े।
2: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए पेश है श्री रामचरित मानस गान, जिसमें अपनी खूबसूरत सी आवाज दी है भूपेंद्र सिंह, रविंद्र साठे और साथियों ने।

हे राक्षस राज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूं। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहां से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है, उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है, इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो मुकुट धरती पर गिर पड़े, उन्हें अंगद ने उठाकर उस दिशा में फेंक दिया जिधर श्री राम थे।

103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। कलाकार है भजन सिंह इवने और साथी।

इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंजनी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट

0: विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कार्यक्रम विवरण में

दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 8:30 पर वक्त होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 पर।

सुबह 10:30 पर वक्त होगा महिला बहनों का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत का, जिसमें आज की बात का विषय होगा बदलते मौसम और महिलाओं का स्वास्थ्य। मुलाकात में सुनेंगे मौसम परिवर्तन और स्वास्थ्य, इस पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी से चर्चा। हेल्थ टिप्स में जानेंगे मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम से बचाव। किचन टिप्स, फिल्मी गीत और कल के आकर्षण।

0: सुबह ग्यारह बजे से शाम 5:30 तक आप आनंद ले सकेंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रमों का। कार्यक्रम युवावाणी युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा अपने मेंटर से नियमित संपर्क में रहे। साइबर जगत में हम जानेंगे पासवर्ड को मजबूत कैसे बनाएं। इसके अलावा इनसे मिलिए फिल्मी गीत और कल के आकर्षण। शाम 6:05 पर समय होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम गोधूली का, आवाज होगी जगजीत सिंह की। कार्यक्रम में फिल्म संगीत फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर, और 6:50 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 7:10 पर, जो आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सामिक कृषि चर्चा में हम जानेंगे जैविक खाद से मिले अच्छी उपज। इसके अलावा होंगे कुछ लोकगीत, भेंटवार्ता श्रृंखला, बातें खेती किसानी की, बाजार भाव और मौसम का हाल। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हमारा बैतूल। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम होंगे रात 9:00, रात 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर, रात 11:00 हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में होंगे समाचार 11:05 पर। श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। कार्यक्रम विवरण में हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
1: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4,14,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामूखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70,00,000, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40,00,000, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85,00,000, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1,20,00,000, मतलब 120,00,000 की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगेगा और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर रहे हैं। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजाति क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना

0: अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
1: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे हैं, बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही है। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुंचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को फुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अनुकूलनीय पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
2: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीन है रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
1: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की दो बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती है। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुख करते हैं खेल का। आईसीसी महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय आईटीआई संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़बेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को एचपीवी टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

भावनाओं के झरोखे से। कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसमें आवाज दी है मुकेश कुमार ने, संगीत शंकर जयकिशन का, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, और फिल्म का नाम है अनाड़ी।

कार्यक्रम का अगला गाना हमने लिया है फिल्म असली नकली से। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज है मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम यादों के झरोके से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और लीजिए अब पेश है कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, गीत के बोल है आनंद बख्शी के, और फिल्म का नाम अपना देश।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के झरोखे से। और अब सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत रोशन लाल का, फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत शंकर जयकिशन का, शब्द रचना हसरत जयपुरी की और फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

क्लासिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। और लीजिए, पेश है कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, फिल्म बरसात से। आवाज लता मंगेशकर की, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने, गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

चलते चलते कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी।

इसके साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोके से अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: सुबह सवेरे।
1: कार्यक्रम सुबह सवेरे में सुनिए ये देशगान।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में सुनते हैं। अब कुछ जन उपयोगी सूचनाएं, संपत्ति रजिस्ट्री और सरकारी योजनाएं। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण आबादी की 48.32 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्री बिना किसी स्टाम्प ड्यूटी या पंजीयन शुल्क के कराएगी। इस योजना से बैतूल के ग्रामीण परिवारों को अपनी जमीन और मकान का कानूनी मालिकाना हक मिलना आसान हो जाएगा। बैतूल कलेक्टर के निर्देश के बाद बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सीएमओ द्वारा औचक कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जिले में लापरवाही बरतने वाले विभिन्न सचिवों और रोजगार सहायकों के खिलाफ वेतन रोकने और सेवा समाप्त करने की दंडात्मक कार्रवाई भी की गई। बैतूल की मशहूर गोंडी सिंगर गायिका ममता उइके को उनकी मधुर आवाज के लिए यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन से सम्मानित किया गया, जिससे जिले का नाम रोशन हुआ। ये थी आज की जनउपयोगी सूचनाएं।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे अब समाप्त होता है।
1: सुबह सवेरे
0: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी

0: समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन, विकास, पोषण और

0: मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 0112371 07 0112371 06 और 0112331 44 44।

0: खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है। अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्ता ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, मां के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, मां को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
0: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सब प्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
0: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी

0: जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई।
1: जी
0: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
1: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर अवनी गुर्जर रियांशी गुर्जर ओजस गुर्जर गुरदीप गुर्जर प्यारी बिटिया मीठी अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने वो लिखते हैं
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है
1: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
0: आप आगे लिखते हैं इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार रचनात्मकता आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा एक्स फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा, ले आया लकड़ी। इतनी सी चुप्पा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही चरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं, ना लकड़ी की कमी ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे ठीक।
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुप्पा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा की।
1: जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुबा चुबा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुपा चुपा
1: सजा बेटे, डर मत, अरे वो तो सपना था। सजा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। सोचा शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुपा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।

0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा, जा, सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस। साड़ी लूंगी गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी। अरे बाप रे इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत ये कुल्हाड़ी है ना वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन नहीं मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं कितने सुंदर हैं ये पेड़। अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है। कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है। बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
3: ये देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़ और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: आई क्या हुआ चुप्पा?
1: अम्मा अम्मा कांटा चुप गया आई।
0: अरे दिखा तो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो ये चीड़ देवदार ओक खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता।

0: है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है? ना फूल ना फल।
0: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है। और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
2: नहीं, अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
0: हाँ,
2: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
0: बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी, मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
0: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
2: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया है? अब किसे काटे?
1: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या
1: हुआ? अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
0: समझ गई ना?
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोलना।
1: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चलो
0: सच्ची।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम उमंग NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

सनम पुरी और शिप्रा गोयल की आवाजों में हंसी तो फंसी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह का गाया हुआ, कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं, इरशाद कामिल का लिखा गीत जिसे संगीत से सवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं। इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी, तो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गा बाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जैसे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में

0: जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हमें गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पर जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंदा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। सच्चा

फूलों से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: विविध भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सन और इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

0: शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुमा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।
1: ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, ले गए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

0: सुनिए अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उप संचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी। समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000

हजार रूपए की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और एमपी पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। अशोकनगर जिले से होकर गुजरने वाली बीना गुना रुठियाई पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीना के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ SRCC भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को अपने रेडियो मित्र कृष्णा महलवंशी की ओर से ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसमें अपनी आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ने। संगीत है आनंद मिलन का, गीत के बोल है सलाहुद्दीन फरवेज और फिल्म का नाम है यादों के मौसम। अनुरोध आप सभी ने किया था। दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और अनोखीलाल वर्मा ने।

कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, संगीत एसडी बर्मन का और शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की। सुनना चाहा है यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम में अब चलते हैं अगले गीत की ओर जिसे पसंद किया है आप सभी ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगोनी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नाइमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने आप सभी ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है आपकी कसम। संगीत एसडी बर्मन का, गीत आनंद बख्शी और आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

अभी आपने सुना फिल्म बादल का ये गीत, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। संगीत दिया था अनु मलिक ने और गीतकार थे समीर। पसंद किया था आप सभी ने। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। और चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, जिसे संगीत से उबारा है, सवारा है राजेश रोशन ने। गीत के बोल है इब्राहिम अश्क के और फिल्म का नाम है बहार आने तक। अनुरोध किया है आप सभी ने। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अनुरोध गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

के अपने कार्यक्रम महिला जगत में। आज के कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी श्रीला संजय। श्रोतो, हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है और इस अवसर को हम कैसे निभाते हैं, यही असल में परीक्षा है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में बदलना जानता है। बस इसी तरह हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है और हाँ, साथ ही कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। तो चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। तो श्रोताओं, शुरुआत होगी आज की बात के साथ। मुलाकात में मिलेंगे डॉक्टर विनय सिंह चौहान से, साथ ही हेल्थ टिप्स में बात करेंगे बदलते मौसम में सर्दी बुखार से बचाव पर कुछ बातें। तो शुरुआत करते हैं आज की बात के विषय के साथ। श्रोताओं, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स और इसी के अंतर्गत आज की बात का विषय हमने लिया है बदलता मौसम और महिलाओं का स्वास्थ्य। हर वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और हमारा स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आज जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश, तो कभी उमस और ठंड का बदलता रूप हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि वे घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देती हैं। बदलते मौसम में हमें सर्दी, खांसी, बुखार, कमजोरी, थकान और संक्रमण जैसी समस्याएं जल्दी हो जाती हैं। गर्मी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जबकि बरसात में मच्छरों और दूषित पानी से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और छोटी बच्चियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा संवेदनशील होती है। श्रोताओं, इन समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को समय पर पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और समय समय पर स्वास्थ्य जांच भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि बुखार या कोई अन्य बीमारी लंबे समय तक रहे तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। याद रखें, हम महिलाएं अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान तो रखती ही हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपने स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें। बदलते मौसम से बचाव केवल सावधानी और जागरूकता से ही संभव है। सखियों, आइए इस खास दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और हर महिला के स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन में अपना योगदान देंगे। तो ये थी आज की बात के विषय पर कुछ जानकारियां जो हमने आपसे साझा की। और अब वक्त है मनोरंजन का, तो लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: श्रोताओं कार्यक्रम में अब वक्त है मुलाकात का, तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विनय सिंह चौहान से। श्रोताओं हम सभी मौसम में हो रहे बदलाव को महसूस कर ही रहे हैं। श्रोताओं बदलते मौसम के साथ ही जुड़ी होती है स्वास्थ्य समस्याएं। जी हां श्रोताओं, मौसम परिवर्तन और स्वास्थ्य, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर विनय चौहान से। सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार।
2: सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह मौसम बदल रहा है, तो मौसम में अचानक आए इस परिवर्तन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3: देखिए जब भी मौसम बदलता है इसमें उमस बहुत होती है। इस मौसम में मौसमी बीमारियां हावी हो जाती हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, उल्टी दस्त होना, सामान्य तौर पर बीमारियां होती है जिससे हमें बचना चाहिए।
2: जी, और जैसा अभी आपने कहा कि मौसम जैसे बदलता है तो इस तरह की इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती है, और हम देख ही रहे हैं किस तरह परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे बरसात के मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी बीमारियां फैलती है?
3: देखिए वायरल फीवर होना इस मौसम में सामान्य बात है, और जो पहले से ही जिनको अस्थमा है तो अस्थमा एकदम से बढ़ जाता है। जिन्हें वात है वो शिकायतें और बढ़ जाती है। इस मौसम में खासतौर पे उल्टी दस्त की शिकायत सामान्य तौर पे देखने को मिलती है, और छोटे बच्चों में सर्दी खांसी की बीमारी जो कि हमें ध्यान नहीं दें तो न्यूमोनिया में भी परिवर्तित हो जाती है।
2: अच्छा जी, और यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम बुजुर्गों की भी बात करना चाहेंगे। तो वर्षा ऋतु में बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
3: देखिए मैं सलाह देना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग लोग, इनकी इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है
2: जी,
3: तो इनको बरसात से बचाना बहुत जरूरी है
2: जी,
3: ये गीले ना हो और ठंडे पानी से बचना चाहिए इन्हें। और छोटे बच्चे हमारे घर के हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, बाहर का खाने पीने से बहुत बचना चाहिए। इनको जैसे पानी हमेशा शुद्ध हम प्रोवाइड कराएं,
2: बिल्कुल,
3: और बाहरी चीजें तो नहीं खाएं, घर का साफ सुथरा खाना मिले इनको
2: जी, जी
3: तो बीमारी से बच सकते हैं
2: जी। अब जब आपने पानी की बात की है तो एक सवाल और है कि बरसात में दूषित पानी से जो रोग होते हैं तो ऐसे

0: रोग से हम कैसे बच सकते हैं, इसका रोकथाम क्या है?
1: देखिए, पानी तो अभी जैसा हमारे यहाँ सप्लाई होगा वो तो होगा ही। नगर
0: बिल्कुल
1: पालिका शुद्ध पानी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती है।
0: जी।
1: तो भी यदि हमारे घर में आरओ नहीं है, जो एक पर्टिकुलर TDS का पानी मानक के अनुसार हमें पीना चाहिए, यदि वो उपलब्ध नहीं है तो बाजार में क्लोरीन की टेबलेट्स मिलती हैं, जो कि हम
0: अच्छा
1: मटके में या पानी के पात्र में डाल के उसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि नहीं तो फिर पानी उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें तो वो पानी भी पिया जा सकता है। या हमारे साथ ही हम पानी कैरी करें हमारे घर का, उबाल के ठंडा करके,
0: कहीं बाहर
1: या आरओ
0: जाते
1: का
0: वक्त
1: पानी यूज करें।
0: जी
1: जी
0: जी यानी हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं
1: जी
0: तो
1: जी
0: अब
1: हमारा पानी हमारे साथ रखें,
0: जी बिल्कुल
1: साफ पानी।
0: जी। और यहाँ पर हम खान पान पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहेंगे
1: जी
0: कि इस मौसम में खान पान कैसा होना चाहिए कि जिससे हमें पोषण भी भरपूर मिले और बीमारियों से हम बचे भी रहें।
1: जी हमें जो सब्जियां हैं धोकर बनाना चाहिए, खास तौर पे हरी सब्जियां,
0: जी
1: उनको अच्छे से उबाल के ही हमें बनाना चाहिए। और इस मौसम में तेल मिर्च मसाले का उपयोग कम करें हम तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादातर देखने में आता है या तो पानी की अशुद्धता या तो खाने की अशुद्धता, इससे ही उल्टी दस्त की बीमारी होती है।
0: जी
1: तो इनसे हम बचें, और बाहर की चीजों से, तली वली चीजों से या स्ट्रीट में जो फूड मिलते हैं उससे बचे रहें
0: जी
1: तो उससे बेहतर होगा।
0: और यहाँ हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में सर्दी खांसी ये बुखार वगैरह
1: बिल्कुल
0: होना तो बहुत आम बात है,
1: बिल्कुल,
0: पर यहाँ पर हमें ऐसे कौन से वक्त में हम सावधान हो जाएं कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनकी सलाह मशवरा लेना चाहिए?
1: जी, जैसे वायरल फीवर जो होता है तो इसमें सिंपल सा सर्दी खांसी से शुरुआत होती है,
0: जी
1: तो हमें एकदम से डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम से एंटीबायोटिक या बुखार के लिए कोई चीज लेने की जरूरत नहीं। 3-4 दिन हम वेट कर सकते हैं, सिंपल हम घर में भाप का उपयोग करें जिससे हमारी नाक खुली रहे, सांस लेने में दिक्कत ना हो। हाँ, यदि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, 3-4 दिन बाद भी हमें तेज फीवर आता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो निश्चित रूप से फिर डॉक्टर की ही सलाह लेना चाहिए। केवल मेडिकल स्टोर पे जाके हमें कुछ भी दवाइयां लेके अपने स्वास्थ्य को और खराब नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बातें बताई,
1: जी
0: अक्सर हम इस ओर लापरवाही कर देते
1: बिल्कुल
0: हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि अक्सर देखा गया है कि बरसात में छोटे बच्चे हो या हम बड़े ही हो, जो हल्की फुल्की जो फुहार होती है इसमें हम भीग जरूर जाते हैं लेकिन हम उतना केयर नहीं करते, लापरवाही से ले लेते हैं, तो इस ओर हमें किस तरह से ध्यान देना चाहिए? क्या हमें अपने सिर को उतनी अच्छी तरह पोंछना चाहिए, सावधान रहना चाहिए?
1: नहीं, देखिए जहां तक है, पहली बारिश होती है, बारिश में भीगने का भी अपना ही मजा होता है, ये
0: जी
1: कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है कि बहुत देर तक हम पानी में ना रहें। और सबसे बड़ा, जैसे बरसात का ऊपर का पानी आता है वहां तो हम लोग थोड़ा बहुत भीग भी सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन यदि हम बहुत छोटे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, इनको खास तौर पर बचाने की जरूरत होती है, और बहुत देर के लिए हम लोग पानी में ना गीले हों। जी
0: और बरसात के मौसम में हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि मच्छरों का बहुत ज्यादा
1: जी जी
0: परेशानी हमें होती है, तो बरसात के मौसम में मच्छरों से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं?
1: बस हमें ये मच्छरों से ही बचना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं उसका उपयोग करें, और सबसे खास सावधानी हमें रखना है कि हमें पानी जमा होने नहीं देना है घर के आसपास, नाली
0: जी
1: हो बहती रहे, कूलर में हमारे पानी बहुत दिनों से जमा है तो उन्हें हटाए, पुराने टायर पड़े उसमें पानी है, क्योंकि अभी ये मौसम अब आने वाला है जिसमें डेंगू होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और मलेरिया, और ये दोनों बीमारियां जानलेवा होती है, मच्छरों से ही होती है, तो
0: जी
1: मच्छरों से बचाव तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
0: जी
1: जी
0: तो इसके लिए हम सावधानी के तौर पे जैसे आपने बताया ये सारे उपाय हम कर सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और यहाँ पर हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि बरसात का मौसम है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी बहुत कमजोर हो
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है, हमारी इम्यूनिटी
1: जी जी
0: कम हो जाती है, तो इसे बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं?
1: देखिए, अभी मौसमी फल हम ज्यादा से ज्यादा खाएं,
0: जी
1: और सुबह हम लोग समय से उठें, नियमित व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, और खाने पीने में स्वस्थ खान पीन हमारा शुद्ध हो,
0: जी
1: जैसे हम घर का बना ही खाना खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, इससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: जी और डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा गया है कि बरसात के मौसम में कीचड़

0: उससे हम कैसे बच सकते हैं?
1: बस हमें ये मच्छरों से ही बचना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं उसका उपयोग करें, और सबसे खास सावधानी हमें रखना है कि हमें पानी जमा होने नहीं देना है घर के आसपास। नाली हो बहती रहे, कूलर में हमारे पानी बहुत दिनों से जमा है तो उन्हें हटाए, पुराने टायर पड़े उसमें पानी है, क्योंकि अभी ये मौसम अब आने वाला है जिसमें डेंगू होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और मलेरिया, और ये दोनों बीमारियां जानलेवा होती है, मच्छरों से ही होती है। तो
0: जी
1: मच्छरों से बचाव तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
0: जी
1: जी,
0: तो इसके लिए हम सावधानी के तौर पे, जैसे आपने बताया, ये सारे उपाय हम कर सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और यहाँ पर हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि बरसात का मौसम है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी बहुत कमजोर हो
1: जी
0: जाती
1: जी
0: है, हमारी इम्यूनिटी
1: जी जी
0: कम हो जाती है, तो इसे बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं?
1: देखिए, अभी मौसमी फल हम ज्यादा से ज्यादा खाएं,
0: जी
1: और सुबह हम लोग समय से उठें, नियमित व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, और खाने पीने में स्वस्थ खान पीन हमारा शुद्ध हो,
0: जी
1: जैसे हम घर का बना ही खाना खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, इससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: जी और डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा गया कि बरसात के मौसम में कीचड़ और

0: की बीमारी में भी परिवर्तित हो सकती है।
1: तो इससे हमें सावधान रहना
0: सावधानी
1: चाहिए।
0: रखना बहुत जरूरी
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: यहाँ हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए वर्षा ऋतु में खासतौर पर आपकी मुख्य सलाह क्या होगी?
0: देखिए, सबसे पहले तो हम अनावश्यक रूप से बरसात में भीगे नहीं। दूसरी चीज, हम सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, योगा करें। और एक चीज बताना चाहूंगा, नींद पूरी होना चाहिए।
1: जी
0: यदि नींद पूरी होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ा बाधक आजकल आप भी जानते होंगे, हमारा मोबाइल फोन है।
1: जी
0: हम घर में ही इतने व्यस्त हो गए कि हम घर से बाहर निकलते नहीं है। दूसरे व्यायाम, योगा, इसके लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। तो इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा।
1: जी
0: और तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि बीमारियों में 50% हमारा तनाव और 50% हमारी एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम,
1: जी
0: ये बीमारी का कारण बनती है। तो हम तनाव मुक्त रहें, हम मोबाइल से दूर रहें, नींद पूरी लें और स्वस्थ रहें। खाना पीना बहुत जरूरी है, कि हम शुद्ध खाना खाएं, शुद्ध पानी पिएं।
1: जी
0: बस हम मौसमी बीमारी से और बरसात में स्वस्थ रह सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बातें बताई हैं सर आपने कि बरसात के मौसम में किस तरह से हम स्वस्थ रहते हैं, और आखिर में जो आपने बताया कि
0: जी
1: किस तरह हमें नींद पूरी करनी चाहिए
0: बिल्कुल
1: और खास तौर पर मोबाइल से दूर रहना
0: बिल्कुल
1: चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें ताकि हम चिंता मुक्त रहें और स्वस्थ रहें।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें, बहुत जानकारी पूर्वक बातें आपने हमें बताई और अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, चलते चलते हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई बरसात की बात हो रही है
0: जी
1: तो आपके पसंद का एक कोई गीत।
0: जी जैसा कि आपको मालूम है, मैं गाने का भी शौक रखता हूँ,
1: जी बिल्कुल
0: तो मैं आपको गुनगुना के बताना चाहता हूँ। मेरी पसंद का ये गीत जरूर सुनवा दीजिएगा।
1: जी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनय सिंह चौहान से की गई बातचीत, साथ ही उनके पसंद का गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में, और अब वक्त है कुछ हेल्थ टिप्स आपसे साझा करने का। और आज हमने इसमें विषय लिया है मौसम बदलने पर सर्दी बुखार से बचाव। तो श्रोताओ, मौसम का बदलना प्रकृति का सामान्य नियम है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस समय हमारा शरीर नए वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में थोड़ा समय लेता है। इसी कारण सर्दी, खांसी, बुखार और गले में दर्द जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इन बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहले संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां, ताजे फल, दाल तथा पर्याप्त मात्रा में पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मौसम के अनुसार कपड़े पहनना भी बहुत आवश्यक है। सुबह और शाम अगर हल्की ठंड लगे तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, और हाँ, भीगने से जरूर बचें। इस मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाने से पहले, भोजन करने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन या हैंड वॉश की मदद से धोना चाहिए। छींकते या खांसते समय रुमाल से मुंह और नाक को ढकें ताकि संक्रमण दूसरों तक ना फैले। इसी के साथ पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना और तनाव से दूर रहना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि तेज बुखार, लगातार खांसी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। याद रखिए सखियों, समय पर उपचार करने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। याद रखें कि मौसम परिवर्तन के समय थोड़ी सी सतर्कता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है बचाव। तो सखियों, ये तो थे कुछ हेल्थ टिप्स, और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल है मंगलवार और कल की कार्यक्रम की कुछ आकर्षण हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि हमारा अगला कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे कल सुबह 10:30 बजे एक नए विषय, सेहत की पोटली और आप ही के पसंद के गीतों के साथ, क्योंकि कल है श्रृंखला सखियों की पसंद। कल आपके साथ होगी हमारी सखी योगिता देशमुख। तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला जगत कल सुबह 10:30 बजे। और जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि हर मंगलवार और शुक्रवार हमारे कार्यक्रम में होती है श्रृंखला सखियों की पसंद, तो अपनी पसंद के गीत अगर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो एक पोस्टकार्ड पर लिख भेजिए हमारे इस पते पर, कार्यक्रम महिला जगत श्रृंखला सखियों की पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल। बैतूल का पिन कोड है 460001। श्रोता, आप अपनी फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। और हाँ श्रोताओं, सिर्फ फरमाइश ही नहीं, आपकी शिकायतें, आपके विचार, कुछ रेसिपीज, किचन टिप्स, ये सब भी आप हमें भेज सकते हैं जिन्हें हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो श्रोताओं, चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जीवन का सबसे सुंदर कार्य किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना है, क्योंकि यही वो संपत्ति है जो बांटने से और बढ़ती है। तो चलिए, इसी के साथ

आप सुन रहे थे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। सुबह के 11 बज चुके हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत तरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानोलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। तुम बिन टू फिल्म से इसे हमने लिया, अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में ये अगला गीत।

तलत अजीज की आवाज़ में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अजीज ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गजल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीता फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS प्रेक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को

0: पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ अभी तो जी लें। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor? ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें,

0: तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन, और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना, हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

जमाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो कहाँ।

साया, अब समझा मैं, अब याद आया।

पैरस की शाम सुहानी, प्यार की नगरी रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, फिर के रहेगी कोई कहानी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आए जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट मैं

0: say such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance.
1: What?
2: अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, आज देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर इज जक्सटापोजिशन by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: दौलत वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।

0: हर जिसे मेरी याद आए तब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए तब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस एंथनी गोंसाल्विस।
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

0: नहीं आते।
1: आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिलेगा आपको साथ में। यहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहाँ नजर आएंगी, और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी है वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा ले किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियाँ, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ये गाना उन्होंने बताया। और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है, गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है, बाकी राज्यों की अपेक्षा ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्योहार आज मनाया जा रहा है, सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि भारत की आखिरी लाइनें, जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम, ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था, पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता।

है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ऐ दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरे को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझला कर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस न करो फिर से मान जाओ। वही हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए, दिल से बहुत उम्मीदें होती है इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा, एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वही हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए, धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता, ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो धुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत न हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत में प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम श्रोतागण बेकरार हैं, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छू कर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी है, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वही हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे एक और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाये हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज थीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस टोली के आदमी हैं हम, तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें। और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ अपना रिश्ता होता है वहाँ ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारी एक और साथी कह रही हैं कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया है। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहे तो कितना ही अच्छा लगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल की सुनते हैं कभी

0: दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं। कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों की लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।
4: मैं दिल।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी, हमने पूछा ना दो दुने चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें। लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं, उसी को यहाँ उजागर करेंगे तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है। जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है। माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फूल लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है। तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी। किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं। दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं। दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए। दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, संभल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी एक और साथी कह रही है कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रही है कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज।
1: मुस्कुरा लाडले।

कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी कॉल साथी कह रही कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारी कॉल साथी कह रही कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे। सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में है वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हुई, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं ये कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इससे जहाँ भावनाएं जुड़ी हूँ वहाँ दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए, आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपके लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहाँ प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है, वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक

साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है, जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए किसने लिखा ये गीत।

जेलीनोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, राजा मेहंदी अली खां के बोल ओपी नैयर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं मालिक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले गुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिए जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर परियोजनाओं 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1,553 करोड़ 98 लाख रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावाट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। उन्होंने बताया कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इस परियोजना में 2.70 रूपये प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले नौ सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अभी इसकी आमद नहीं हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, थार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन और छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दल पहुंच रहे हैं। खंडवा जिले में आमा खुजरी जंगल में वन भूमि पर दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सुबह प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के करीब 600 अधिकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे से 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। पन्ना पुलिस ने तत्परता निभाते हुए पवई थाना क्षेत्र से अपहृत एक कपड़ा व्यापारी के 20 वर्षीय बेटी को रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं। खरगोन जिले की बड़वाह के पास चोरल नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से बीच धारा में फंसे इंदौर के 3 युवकों को स्थानीय पुलिस ने अस्थायी रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया से नवशक्ति विनायगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज

0: से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री पी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनोबरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनोबरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
4: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष
1: अमीशा। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद

0: सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
5: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, ला ला ला ला। जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हन हन हन प्यार हो गए।

0: खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो, हा हा हा खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ तुमको लेने दो, हा हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ तुमको लेने दो, हा हा हा हमसे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हने हने हने प्यार हो गया,
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा,
2: ये

0: पड़ोसी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। अन्ने अन्ने अन्ने प्यार हो गया
1: ओ मन्नू तेरा हुआ।

खींचा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो

0: हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनुप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
3: G-A-G-Cat, cat माने बिल्ली।
4: R-A-T-Rat, rat माने चूहा।
3: C-A-T-Cat, cat माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ।
4: Hey, mad, mad माने पागल। B-O-Y, boy।

0: L-I-O-N, goat. Goat माने बकरी. L-I-O-N, lion. Lion माने शेर. अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: M-A-D, mad. Mad माने पागल. B-O-Y,

0: मिला ले नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया।
1: जहां से डरो ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर तेरा क्या करेगी दुनिया।
1: जहां से डरो ये सोचा करो हमें क्या कहेगी दुनिया।
0: बी ए डी बैड, बैड माने बुरा।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: के बाहर।
1: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीर जी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

0: जान यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: अपनी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना?
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती है कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
1: जी,
0: है ना? और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
1: जी।
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
1: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले हो चुकी है।
0: उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
1: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज भी होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
2: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखा

0: कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
1: अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
0: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
1: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
0: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
1: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए।
0: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
1: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
0: हाँ, सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
0: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
2: हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
0: आपके कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ठाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों। कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
1: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
2: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था? लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
4: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने

0: कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
1: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने ये कागज कहाँ पाया?
0: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
0: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसी खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई, ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आँच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदा नंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यो टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ।
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
7: तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
8: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
7: जी।

0: सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है. लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता
1: जी
0: है, ना ही ये हो सकता है. और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है.
1: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं. लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है. जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है. निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाते हैं. कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. इससे संबंधित और बातें करेंगे लेकिन एक अंतराल ले लें.

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन हो, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ है, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वो आप कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि

0: स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना
1: दिखाते हैं।
0: लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है,
1: बिल्कुल। और
0: तो इस
1: नेहा
0: किरदार में आपको क्यों ढलना है?
1: क्यों ढलना है, और
0: जी
1: नेहा जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो
0: जी
1: उसके वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप
0: जी
1: अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब
0: हाँ
1: घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने
0: जी
1: अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस
1: बिल्कुल
0: उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा।
1: बिल्कुल
0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो
1: बिल्कुल
0: एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए, या फिर से क्यों ना उस ओर बढ़ा जाए,
1: हाँ।
0: तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना
1: छोड़े
0: थोड़ा
1: रहना
0: मुश्किल है, तो
1: मुश्किल है,
0: वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे
0: जी
1: दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है। स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में, इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो हमने सुना
0: बिल्कुल,
1: ही दी है
0: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं कर

प्यार दिल से कभी कम ना होगा, गुजरने को ये दिन गुजरते

0: प्यार करते ही करते रहेंगे, दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे।
1: तो देखो
2: जीवन की बात बताता ये गीत कितना अच्छा मंजे जी।
1: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा जाए विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहाँ केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्य और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहाँ प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहाँ विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
2: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
1: वो भी अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताएं, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
2: जहाँ तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूर्ती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है।
1: क्या बात,
2: और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना है। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
2: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती है ससुराल को और ना ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती, समय लगता है। रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें, लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना, थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही है और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है, तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: तो
2: वो एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है, वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: तो
1: तो
0: देहा
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
0: बिल्कुल है। और बहुत खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जड़ तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
1: था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता ये बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते हैं तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती है तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए, सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए शादी के बाद। वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाए। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ, ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो, या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे, जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए, तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ, तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस समझकर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है
1: विवाह को अच्छी तरह से, बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए चाचा,
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना।
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूंथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली आधा कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हो और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गर्म मसाला, आधा 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको, आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पीसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो है वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना।
1: हाँ
0: और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, इस दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात ये है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक, जिसको फीकी लगेगी वो यही कह रही है
1: हाँ
0: क्या बना
1: तो
0: दिया।
1: आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक का आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग जीरा सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है, फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे, फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए, अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं, हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौरियां तो बन ही चुकी हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: आप दोनों ये सारी चीजें खाइए। और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए,
0: हाँ
1: छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को
0: बिल्कुल
1: मिलाकर खाइए।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो
1: तो
0: अब
1: बस हम
0: कार्यक्रम से
1: चले,
0: लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो आईबीएस के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हुआ तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था आईबीएस, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहां मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो, तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट

0: कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज बदल जाती है, तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहां से खाने की पाइप शुरू होती है वहां पे काफी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा के गले में कुछ अटका हुआ है, तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है।

0: पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं
1: क्यों हो
0: अल्सर।
1: रहा है?
0: ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं,
1: जी
0: तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते
1: जी
0: हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाइयां नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
1: जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है। लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
0: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी
1: जी
0: कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है,
1: जी जी
0: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है। काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
1: जी और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
0: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट दिन मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है, कुछ ऐसा?
0: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं,
1: जी
0: जो हम सिंपल टर्म्स में, देर इज गुड बैक्टीरिया एंड देर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो, अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं
1: जी
0: इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर, बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया।
1: जी तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
0: तो मैं तो
1: पड़े?
0: कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
1: दही।
0: दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
1: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्स का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
1: क्या
0: मुझे
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: पसंद है।
1: आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, हमारे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। पर अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो।

0: कारगर दवा कोई इलाज है लोगों के, क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें।
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? बोले हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, पेशेंट
0: जी
1: का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो
0: जी
1: पानी नहीं
0: जी
1: पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियाँ हो जाएं, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, ज्वार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए मेरे को।
1: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना वाज क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे,
0: जी
1: और
0: क्या
1: काफी
0: बात
1: सुना
0: है
1: है हमने।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी।
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे भी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं। छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स हो, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम पीएच प्रोब बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड

0: ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस.
1: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय. डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी

0: डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, के कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है
0: जी।
1: तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है। तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। यही मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
0: जी जी जी, और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो,
1: बिल्कुल
0: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो ये?
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पी

0: के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही है। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फिकोरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा देखते हैं, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल हो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां है, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात है कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है, कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले, अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है. तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत.
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या कुछ नहीं?
0: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड.
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है. इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये.
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो,
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो.

0: लोग सब आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो। तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल दे, अरे ये तेल अच्छा है, ये ले ले, इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना है, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग

0: सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन्स, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन्स आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाइज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: स्टेरॉइड भी आ रहा है
0: स्टेरॉइड्स भी
1: अलग
0: आता है,
1: अलग.
0: और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उससे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड, मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देके फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन ये मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है, और वर्स्ट कम टू वर्स्ट हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा. आपका तहे दिल से शुक्रिया. विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार.
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे

यूं तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं, जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं। वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं, न कभी यादों में तब्दील होते हैं। वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

आंखों में सपने भी होते हैं और आंसू भी। दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा। हम अभी हाजिर हुए

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़े। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली बिसरी याद।

जब निकले अपने घर से तो एक अलग ही तरंग होती है मन की। घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है। फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय संध्या के 5:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट आरजे मोहन मदान। आप सुन रहे हैं युवाणी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी की रेस में पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ रहे हैं। दोस्तों, आज की युवाणी में हमारे पास एक ऐसा विषय है जो सुनने में तो थोड़ा सीरियस और किताबी सा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ये आपके करियर और जीवन का सबसे बड़ा लाइफ हैक है। आज की बात का विषय है अपने मेंटर से नियमित संपर्क में रहे। अब आप कहेंगे, मोहन भाई, ये मेंटर वेंटर क्या है? क्या ये वही लोग हैं जो बिना मांगे एडवाइस देते हैं? अरे नहीं, मेंटर वो नहीं जो आपको नसीहतें दे, मेंटर वो है जो आपको नसीब बनाना सिखाए। मेंटर क्या है? एक लाइफ का गूगल मैप। हम सब जब पहली बार किसी अनजान शहर जाते हैं तो क्या करते हैं? हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ के रास्तों का पता नहीं होता है, वहाँ का ट्रैफिक और वहाँ के शॉर्टकट्स का अंदाजा नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही आपका करियर और आपकी लाइफ है। आपका मेंटर आपका जीपीएस है। उसने वो रास्ते पहले ही नाप लिए हैं जिन पर आप आज अपने पहले कदम रख रहे हैं। उसने वो गड्ढे देख लिए जिन्हें आप आज गिरने वाले हैं। तो भाई, जब कोई आपको पहले ही सावधान करने के लिए तैयार बैठा है, तो बार बार ट्रायल एंड एरर की गलती क्यों करते हो? बहुत से युवा ये गलती करते हैं। वे मेंटर को इमरजेंसी सर्विस समझ बैठते हैं। जैसे ही कोई मुसीबत आई तो तुरंत कॉल किया, सर क्या करूं, और जैसे ही समस्या हल हो गई तो मेंटर को बुला दिया। अरे दोस्तों, ये रिश्ता एटीएम कार्ड जैसा नहीं है कि पैसे निकाले और जेब में डाल दिए। ये बहुत गहरा रिश्ता है। जब आप अपने मेंटर से लगातार संपर्क में रहते हैं, तो आप केवल एक सलाह नहीं लेते, बल्कि उनके सालों के अनुभव को अपने भीतर आत्मसात कर रहे होते हैं। आप उनकी सोचने की प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस सीख रहे होते हैं। मेंटरशिप

एक ट्रस्ट का खेल है। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत और छोटी छोटी उलझनें उनसे साझा करते हैं तो उन्हें आप पर भरोसा बढ़ता है, और जब आप पर भरोसा बढ़ता है तो वो आपको एक ऐसे अवसर और लोगों से मिलवाते हैं जहां तक आपकी पहुंच अगले 5 सालों तक ना हो पाती हो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना लक्ष्य बताते हैं जिसका आप सम्मान करते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी जिम्मेदारी पैदा होती है। आप अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगली बार मुझे सर को ये रिपोर्ट देनी है। और इसे बोरिंग मत बनाइए, कनेक्टेड रहिए। अब आप कहेंगे, मोहन भाई बार बार बात करके उन्हें बोर करना सही है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, आपको उन्हें परेशान नहीं करना है, आपको उन्हें एंगेज रखना है। उन्हें सिर्फ अपनी समस्याएं मत बनाइए, उन्हें बताइए कि उनकी पिछली सलाह ने कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव किया, कैसे चेंज लाया। उन्हें ये जानकर खुशी होती है कि उनका ज्ञान किसी सही जगह इस्तेमाल हुआ है। उनसे पूछिए, सर मैं सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ, आपकी क्या राय है? ये उन्हें आपके विकास में एक पार्टनर बनाता है। एक प्यारा सा मैसेज, एक ईमेल या एक महीने में एक बार छोटी सी मुलाकात, ये सब मिलकर एक मजबूत धागा बुनते हैं। एक चुनौती आज आपके लिए है मेरे युवा साथियों, आज का दौर कनेक्टिविटी का दौर है। हमारे पास दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन क्या हम उन लोगों के साथ जुड़े हैं जो हमें वाकई बेहतर इंसान बना सकते हैं? मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ, अपने फोन की गैलरी या कंटेंट लिस्ट खंगालिए। कोई तो होगा, आपका पुराना टीचर, आपका सीनियर, कोई बड़ा भाई या कोई प्रोफेशनल जिसे आप अपना मेंटर मानते हैं। उन्हें आज एक मैसेज कीजिए, कुछ भारी मत लिखिए, बस इतना कहिए, सर आज मुझे आपकी याद आ रही है, आज आपने जो मुझे सीख दी थी उसे मैं भी आज फॉलो कर रहा हूँ। देखिए उस एक मैसेज से आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलती है। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी एक लंबी यात्रा है, रास्ते मुश्किल भी होंगे, पहाड़ भी आएंगे, और हाथ में एक ऐसे इंसान का साथ है जिसने वो रास्ता देख रखा है, तो आपकी रफ्तार हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, अपने मेंटर से जुड़े रहिए, उनसे सीखिए, उनका सम्मान कीजिए, और खुद भी भविष्य में किसी और के मेंटर बनने के काबिल बनिए। तो आज के युवाणी में, आज की बात में बस इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहन मदान। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, और हाँ, अपने मेंटर्स को अपडेट देना मत भूलिए। तो अब सुनते हैं ब्रह्मास फिल्म का ये गाना जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: तो दोस्तों, इस गाने के बाद चलते हैं भेंट वार्ता की ओर। आज की भेंट वार्ता में हमारे साथ मौजूद है बैतूल जिले के ऐसे शख्स जिनसे आप बीमार होने पर रूबरू होते ही हैं। हम बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट श्री कृष्णा पवार जी की, जिन्होंने विद्या भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बी फार्मा की डिग्री पूरी की है। भारत की जानी मानी दवाई कंपनी मैकेलियर्स फार्मा में इन्हें सेल्स की जिम्मेदारी मिली और श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में लेक्चरर रहते हुए इन्होंने कई युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा दी है। तो आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। कृष्णा जी, युवा साथियों की कलाओं को प्रदर्शित करने वाले युवाणी के इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन जी।
0: सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बचपन में आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? क्या आपने पहले से ही तय किया था कि आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे?
1: देखिए ऐसा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सामान्यतः तो हम लोग वही जैसे आम बच्चे होते हैं वही चोर पुलिस खेलना, मैं बड़ा होकर के पुलिस बनूंगा इंस्पेक्टर बनूंगा, बस इसी टाइप की बातें करते थे। हम लोगों ने अपना 10th किया, उसके बाद में सब्जेक्ट लेने की बारी आई। घर पे इच्छा थी घर वालों की कि मैं मैथ्स लूं, लेकिन मैंने बायो लेना प्रेफर किया। 12th के बाद हमने फार्मेसी को एज अ कैरियर अपना चुना।
0: अच्छा, वैसे भी हमारे भारत में ज्यादातर युवाओं का झुकाव या तो मैथ्स में होता है या तो साइंस में, इस पर आप क्या कहते हैं?
1: देखिए ऐसा है कि अच्छी बात है, डॉक्टर इंजीनियर मतलब मैं हर ब्रांच की अपनी खूबी होती है, हर सब्जेक्ट का अपना एक स्कोप होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर अच्छा है इंजीनियर अच्छा है। हाँ, लेकिन आप जिस भी कोर्स को कर रहे हैं तो उसको पूरी ईमानदारी से करें, पूरी लगन से करें और अपना 100% उस कोर्स को दें आप और अच्छी मेहनत करें, ताकि जो भी कार्य आप या जो भी विषय लेकर आप पढ़ रहे हैं उसमें अपनी विशेषज्ञता हासिल करें और सफल हो।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। कृष्णा जी, मेडिकल फील्ड में जो युवा करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए हाल ही में कौन से कोर्स मौजूद है?
1: देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। 12th बायो के बच्चे यूजुअली नीट की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन नीट के अलावा भी जो एमबीबीएस वगैरह या जो दूसरे हमारे डॉक्टर के कोर्सेज होते हैं उनके लिए होती है। उसके अलावा फार्मेसी एक बहुत अच्छा विकल्प है। फार्मेसी में दो प्रकार के कोर्सेज हैं बेसिकली जो 12th हायर सेकेंडरी के बाद होते हैं। एक तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, और एक होता है बी फार्मा जो 4 ईयर डिग्री कोर्स है, बैचलर कोर्स। मीन्स अगर आपने फार्मेसी की डिग्री कर ली बी फार्म, तो आपको अलग से उसके लिए ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं। आपका ग्रेजुएशन भी हो रहा है प्लस फार्मेसी का भी आपका एक फुल टाइम 4 ईयर का कंप्लीट ग्रेजुएशन आपका

0: इसके बाद फर्दर आप आगे चल करके इसमें एमफॉर्म वगैरह भी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे फार्मेसी में कई विषय होते हैं, कुछ ड्रग्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ फार्माकोलॉजी होता है, सूटिक्स होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिर उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये जो हायर एजुकेशन होता है आफ्टर बी फॉर्म, तो एम फॉर्म में अपने विषय लेकर के उसमें विशेषज्ञता हासिल की जाती है, और बी फॉर्म एक कॉमन कोर्स होता है जिसमें सबको सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं।
1: अच्छा, मेडिसिन के क्षेत्र में आपका किरदार बहुत अहम होता है
0: जी।
1: वैसे फार्मासिस्ट की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है?
0: फार्मासिस्ट की जरूरत तो जहाँ पे भी चिकित्सा सुविधाएं हैं वहाँ बिना फार्मासिस्ट के कुछ संभव ही नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, विदेशों में या गल्फ कंट्रीज वगैरह में, यूएस वगैरह में जहाँ हॉस्पिटल फार्मेसी है, वहाँ पे फार्मासिस्ट का काम और उसका रोल बहुत अहम होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो डॉक्टर का काम होता है कि सिर्फ पेशेंट की जांच करना है और डायग्नोस करके ये बताना है कि उसको कौन सी डिसीज है, उसके बाद में उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली उसको कौन सी मेडिसिन कितनी प्रिस्क्राइब करना है, कितनी क्वांटिटी, कितने समय तक उसे खाना है, ये सारी चीजें जो है, डोज और कितने ड्यूरेशन तक उस दवाई को उसको ग्रहण करना है, सेवन करना है, वो सारी चीजें फार्मासिस्ट ही बताता है।
1: अच्छा, कोविड-19 के बाद आप लोग की वैल्यू कितनी बढ़ गई है?
0: देखिए, वैल्यू तो ऐसा है कि ये बहुत अहम किरदार होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, फार्मासिस्ट का जो रोल होता है बहुत अहम होता है। आप देखिए, डॉक्टर ने तो आपको ट्रीट कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो मेडिसिन देने का काम होता है वो फार्मासिस्ट का ही होता है। हम सिर्फ अपने पेशेंट को दवा नहीं देते हैं, बल्कि उसे बहुमूल्य सलाह भी देते हैं कि भाई आप ये ले, ये ना ले, पेशेंट की कैसी स्थिति है, वो एफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसके हिसाब से उसके लिए कौन सी दवा उचित रहेगी, कौन सी दवा में उसे अच्छा रिजल्ट मिले, उसके जेब पर भी कम भार पड़े, इस तरह के जो विकल्प हम सोचते हैं और बहुत सोच विचार करके अच्छी मेडिसिन जो होती है, क्वालिटी मेडिकेशन हम अपने पेशेंट को देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो।
1: अब इसे और गहराई से समझने के लिए हम इस पे ग्राउंड लेवल पर सुनते हैं
0: जी।
1: जब कोई पेशेंट आपके मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है
0: जी,
1: तो आप किन चीजों को ध्यान में रखते हो?
0: हमारी प्राथमिकता ये होती है कि जो हमारे पास दवा लेने आया है हम उसे अच्छी औषधि दे पेशेंट को। हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट वो अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो जो उसका सस्ता सब्स्टिट्यूट होता है, सस्ता से मतलब खराब नहीं है, सस्ता से मतलब सस्ता और अच्छा जो विकल्प होता है हम उसे वो देते हैं, और उसके बाद में उसको पूरा समझाते हैं कि आपको इतने दिन लेना है ये चीज। जो सेल्फ मेडिकेशन होता है उससे कई बार नुकसान होता है पेशेंट को।
1: यदि मान लीजिए कोई डॉक्टर गलती से प्रेस्क्रिप्शन में गलत दवाई लिख देता है, उस पर आप क्या देखते हैं?
0: बहुत पोलाइट वे में हम डॉक्टर से बात करते हैं कि सर ये मेडिसिन है आपने, और ये थोड़ा सा इसका डोज ऐसा है, इसको इतना नहीं जितना देना पड़ेगा, और डॉक्टर हमारी बात से कन्विंस होता है, और फिर हम उसको मतलब जो भी कैलकुलेशन करके उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली जो भी देना है।
1: आजकल हर दूसरा व्यक्ति गूगल डॉक्टर बन गया
0: जी,
1: इसमें हमारा युवा वर्ग खास करके शामिल है, खुद ही सिम्टोम्स जानकर दवाई ढूंढ लेते हैं। तो एक फार्मासिस्ट होते हुए आप इस गूगल डॉक्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं ये नहीं कह रहा कि गूगल डॉक्टर जो बताता है वो सारा सही बताता है या सारा गलत बताता है, लेकिन वो भी क्या है, चैट जीपीटी और इससे पूछ करके दवाइयां लेना और गूगल से पूछ करके, मतलब ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती है जिसके लक्षण लगभग समान होते हैं, तो आप सिम्टम के आधार पर कोई भी दवाइयां मन से ले लें तो ये सिवाय नुकसान के आपको कुछ नहीं होगा। इस चक्कर में ना रहें कि मन से देख लिया, दवाई ले ली, कुछ भी उठा के ले आए, उसको उचित तरीके से पहले डॉक्टर को दिखाइए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जो दुकान है, व्यवस्थित जो आदमी अपना काम लेकर के बैठा है, वहां से आप दवाइयां खरीदें, और उसके बाद में प्रॉपरली उसको पूछे कैसे लेना है, क्या लेना है, कितनी मात्रा लेना है, और उसके बाद ही जितनी मात्रा में लेना है तो उससे आपको लाभ होगा, अन्यथा सेल्फ मेडिकेशन बहुत खतरनाक होता है। एक हाथ बार डॉक्टर ने दवाई लिख दी किसी को, नींद की दवाई, नींद की दवाइयां ही खाने लग गया, उसके बाद में क्या होता है कि एक समय के बाद पेशेंट में टॉलरेंस डेवलप होता है, इसी को हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज, मतलब ड्रग का मिसयूज। यहाँ ड्रग का यूज नहीं हो रहा, ड्रग का मिसयूज हो रहा, वो एडिक्ट हो गया। माल प्रैक्टिस रोकने के लिए, सब जो एडिक्शन है ये सब चीजें रोकने के लिए हमको डॉक्टर के ही मार्गदर्शन से और फार्मासिस्ट के ही निर्देशन में दवाइयां लेनी है और अपना इलाज करना है।
1: मतलब ये कह सकते हैं कि बिना डॉक्टर की उचित सलाह के हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अच्छा कृष्णा जी, हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली एक 10 रुपए वाली क्रोसिन भी आती है
0: जी,
1: और एक 100 रुपए वाली हाई पावर की टेबलेट भी आती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कई लोग महंगी दवाइयों की ओर रुख करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी आराम चाहिए होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: रेट में बहुत वेरिएशन होता है, सही बात है आपकी, कुछ दवाइयों के रेट काफी कम होते हैं, कुछ के बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो क्षेत्र है इसमें क्या है कि दवाइयां बन के आ गई, बिक गई, सब एक सामान है, ऐसा नहीं होता है। जो रॉ मटेरियल होता है, बल्क ड्रग जो होती है, उसकी भी क्वालिटी में वेरिएशन होता है। और डोसेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, दवाइयां बनाते हैं। हाँ, तो जो बल्क ड्रग होती है उसके भी जो ग्रेड होता है उसमें अंतर होता है। उसके बाद में क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है। उसके बाद में कोई चीज मार्केट में आता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, पहले एनिमल पे ट्रायल होते हैं, जो भी वॉलंटियर्स रहते हैं उनपे ट्रायल होने के बाद में एक दवाई का मार्केट में आना एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजों का भी तो खर्चा आपको उसमें काउंट करना पड़ेगा, इसीलिए दवाओं के रेट कम ज्यादा है।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा लगभग हर जिलों में जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई है
0: जी,
1: जहाँ सस्ते रेट में दवाइयां मिल भी जाती है और इन दवाइयों का जो फॉर्मूला रहता है सेम ही रहता है। तो जन औषधि केंद्र और एक मेडिकल स्टोर की दवाई, इसमें कुछ फर्क होता है?
0: मैं तो इतना दावे से कह नहीं सकता कि फर्क होता है। दवाइयां ठीक ठाक ही होती है जन औषधि केंद्र की भी। अब वो पेशेंट पे डिपेंड करता है उसको कौन सी दवा से जल्दी रिलीफ मिलता है या क्या प्रेफर करता है, ये उसकी च्वाइस है। क्योंकि पेशेंट का अपना खुद का भी अनुभव होता है, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर से भी जाके दवाई ले रहा है, जन औषधि केंद्र से भी ले रहा है, गवर्नमेंट सप्लाई में सरकारी वाली भी ले रहा है। मतलब वो निर्भर करता है उसके ऊपर।
1: अच्छा, आप और हम देखते हैं कि लोग थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने पर सर्दी खांसी की दवाई लेने चले जाते हैं
0: जी,
1: तो आगे चलकर इसके क्या नुकसान होते हैं? ये अभी लेना सही है कि इसे हमें कंट्रोल करना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत गलत प्रवृत्ति है हमारे भारत में। अब आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, लोग तो एंटीबायोटिक भी मन से लेने लग गए। दवाइयों का ऐसा रहता है कि इसका एक जो क्या होता है, एक निश्चित डोज होता है। एंटीबायोटिक का तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं भाई 3 डेज ले, 5 डेज ले, 7 डेज ले। हर दवाइयों का अपना डोज है, एंटीबायोटिक का एक शेड्यूल होता है। अगर आप 2 टैबलेट खा करके ठीक हो गए, ठीक है, सपोज बीमारी आपको तुरंत लगा कि आप ठीक है, अब तो ठीक लग रहा है, दवाइयां बंद कर दी। अंडर डोज लेने से ये हो रहा है कि वो चीज का रिलैक्स मीन्स वो बीमारी फिर से वापस आती है पलट करके। हमारा शरीर है उस दवा के प्रति, उसमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, रेजिस्टेंस होता है। तो अगली बार क्या होगा, आपको जब तबियत खराब होगी तो आपको वो दवाई असर नहीं करेगी, फिर उससे हायर एंटीबायोटिक हमको देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है और आपको हायर एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ रहा है। तो इसकी भी एक सीमा है, आखिर कहां तक, कितना हायर एंटीबायोटिक की तरफ आप जाएंगे। जो भी रिकमेंडेड डोज है 5 डेज 7 डेज वो आपको लेना ही चाहिए, अदरवाइज एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें।
1: प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक बार लेंगे, दो बार लेंगे, हमको तुरंत में तो रिलीफ हो जाएगा
0: जी,
1: पर बाद में हमारे लिए दिक्कत हुई थी। अच्छा कृष्णा जी, ऐसी कौन सी दवाई है जो हर घर में एक सेफ्टी किट के तौर पे मौजूद रहनी चाहिए?
0: सर्दी खांसी तो सामान्यतः एलर्जी की दवाइयां आप ले सकते हैं, सेट्रिजिन वगैरह, कुछ स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो गया या कुछ किसी कीड़े ने काट दिया, कुछ काट दिया, तो इस ऐसी इमरजेंसी के लिए हम सेट्रिजिन वगैरह पास में रख सकते हैं। सर्दी खांसी के लिए नॉर्मल सिनारेस्ट वगैरह ये वो सब चलती है मार्केट में। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनाल्जेसिक ड्रग्स जो भी है दर्द वर्द के लिए, ये सब सामान्य थोड़ा बहुत ले सकते हैं, यानी इतना कि आप खा करके आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए और आप डॉक्टर तक चले जाए, आगे का ट्रीटमेंट खुद ना करें। ये इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो डिस्प्रिन टैबलेट और सॉर्बिट्रेट करके टैबलेट आती है, सब लिंगल मुंह के नीचे ऐसा रखना है, जीभ के नीचे दबाना है, तो तुरंत आपको एटलीस्ट आप डॉक्टर के वहां तक पहुंच जाओगे सेफली, है ना। तो इस तरह से घर में अगर कोई पेशेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ब्लड प्रेशर वाला है, तो ऐसी कुछ दवाइयां, आवश्यक दवाइयां अपने पास रखनी चाहिए। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ता है तो फीवर कंडीशन होता है, तो पैरासिटामोल क्या करता है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है। और दूसरा क्या है, इसका पेन में भी रोल है, एनाल्जेसिक, हल्का फुल्का दर्द वर्द है तो आप ले सकते।
1: आप दवा को कैसे परिभाषित करते हैं?
0: दवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो बीमारी को ठीक करे। ड्रग इज अ सब्सटेंस विच इज यूज टू प्रिवेंट, क्योर और डायग्नोस ऑफ ए डिसीज। दवा वो चीज है जो आपको क्योर भी करती है, तो क्योर प्रिवेंशन या बीमारी की पहचान करने के लिए भी जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं, जो रिएजेंट यूज करते हैं, वो सारे ड्रग के अंतर्गत आते हैं।
1: तो कृष्णा जी, आप युवाणी की श्रोताओं को, खासकर युवाओं को, दवाई और सेहत को लेकर ऐसी क्या बात बताना चाहेंगे, लाइफ टाइम काम है?
0: मैं तो दवा के व्यवसाय से जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक सलाह है युवाओं को कि कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा अपने शरीर को दें। आप कुछ भी करें, चाहे तो कुछ स्पोर्ट्स पकड़ लें, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, योगा कर लें, आप कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दें। उसके अलावा जो जीवन शैली है, आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है। लाइफस्टाइल डिजीजेस मतलब कि जो लेट सो रहे हैं आप, 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तो 6-7 घंटे की नींद भी आपको लेना है। रात का खाना थोड़ा जल्दी खा ले, सुबह भी खाना 10-11 बजे तक आपका हो जाए, शाम का खाना 6-7 बजे तक हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप ये जीवन शैली अपनाते तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। जी मेडिसिन तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए डॉक्टर, मतलब कोशिश करना चाहिए कि हम खुद ही अपने मन से बेहतर रह सकें।
1: तो कृष्णा जी आपने युवाणी में आकर हमारे युवाओं को मार्गदर्शित किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। इस भेंटवार्ता के बाद अब शाम की महफिल को बनाते हैं कुछ खास और सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये अल्फाज।

इस गाने के बाद अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारी जेब में रखे फोन से भी ज्यादा जरूरी है। वो है हमारा पासवर्ड। सोचिए, आपके घर का दरवाजा है, उस पे अगर प्लास्टिक का खिलौने वाला ताला लगा दे तो क्या होगा? कोई भी धक्का देकर अंदर आ जाएगा। बस पासवर्ड भी बिल्कुल वैसे ही है, हमारी डिजिटल दुनिया का ताला। हमारा फोन पे, जीमेल, इंस्टा या फेसबुक, ये सब हमारे डिजिटल घर हैं। और क्या आप जानते हैं, हर 40वें सेकंड में दुनिया में एक पासवर्ड हैक होता है। जी हाँ, जब तक मैं ये लाइन बोल रहा हूँ तब तक किसी का अकाउंट हैक हो चुका होगा। अपने इस डिजिटल लॉक को इतना मजबूत बनाए कि कोई उसके आसपास भी फटक ना पाए। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कमजोर पासवर्ड। मैं आपसे तीन पासवर्ड बोलूंगा, अगर आपका पासवर्ड इनमें से

तो प्लीज दिल पर हाथ रख के इन्हें हटा लीजिए। पहला पासवर्ड है 123456, दूसरा है खुद पासवर्ड, और आखिरी वाला है अपना नाम प्लस 123, जैसे कि अमित 123। इसे सुनकर कितनों का दिल धड़का, घबराइए मत, इस रेस में आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 70% लोग यही गलती करते हैं। लेकिन सुनिए, हैकर के पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो एक सेकंड में 10 लाख पासवर्ड ट्राई कर लेते हैं। 123456 को तोड़ने में उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन एक मजबूत पासवर्ड को तोड़ने में काफी सालों का वक्त लगता है। कमजोर पासवर्ड की पहचान तीन तरीकों से कर सकते हैं। जैसे छोटा पासवर्ड अगर 8 वर्ड से कम का होता है तो हमारे लिए खतरा होता है। फिर कुछ आसान शब्द जैसे अपना नाम या फिर बर्थ डेट, ये सब हैकर की पहली पसंद होते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा मजबूत पासवर्ड की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसे अपनाकर आप भी अपने मोबाइल को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें होता है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 12 से 15 शब्दों का होना चाहिए। ये पासवर्ड नहीं बल्कि पासवर्ड की एक लंबी दीवार होती है, और पासवर्ड को हमेशा मुश्किल बनाओ। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, उसमें बड़े लेटर्स, छोटे लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सब इंक्लूड करो, और हमेशा अपने पासवर्ड को अलग अलग रखो। हर ऐप का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए। अगर फेसबुक का पासवर्ड लीक हो गया तो कम से कम आपका फोन पे का पासवर्ड तो सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आज का ये सफर यहीं होता है समाप्त। आपसे अब अगली मुलाकात होगी कल शाम 5:30 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए जान लेते हैं आज और कल की सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे गोधूली कार्यक्रम। कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 6:30 पर। 6:50 से प्रस्तुति होगी सबरस कार्यक्रम की। प्रादेशिक समाचार सुनेंगे 7:10 पर। 7:20 से वक्त होगा ग्राम सभा कार्यक्रम का। इसमें आज की बात का विषय है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का समय होगा रात्रि 8:00। कार्यक्रम हमारा बैतूल सुनेंगे 8:30 पर। 8:45 से सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से होंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। 10:00 सुनेंगे कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम सुगम संगीत की प्रस्तुति होगी 10:30 से। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे 11:05 पर। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। कल की प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी सुबह 6:05 पर भक्तिधारा कार्यक्रम के साथ। 6:30 से होगा चिंतन कार्यक्रम। श्री रामचरितमानस गान की प्रस्तुति होगी 6:35 से। 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंजनी। हिंदी में समाचारों का वक्त होगा सुबह 7:00। 7:10 पर रिले किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यादों के झरोखे से कार्यक्रम सुनेंगे 7:20 पर। 7:50 पर वक्त होगा सुबह सवेरे कार्यक्रम का। 8:00 से सुनेंगे समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज जानेंगे 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुति होगी 8:30 से।

सुबह 9 से संध्या 5:30 तक होंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। इसी बीच जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 10 बजे। 10:05 पर लेकर आएंगे आपके पति आपके गीत कार्यक्रम। महिला जगत कार्यक्रम सुनेंगे 10:30 से। इसमें आज की बात का विषय होगा विज्ञान, अंतरिक्ष और नई पीढ़ी की महिलाएं। 2:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। हिंदी में समाचार सुनेंगे 2:15 पर। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युवाणी कार्यक्रम का वक्त होगा संध्या 5:30 पर। कल कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनेंगे 6:00। 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत प्रथम सेमीफाइनल का द ओवल लंदन में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। सात 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे 11:05 पर। ये थे आज और कल की सभा के शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय संध्या के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही गुदुली कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: और ये मेरा सबसे बढ़िया निर्णय रहा कि मैंने रेडियो को चुना। और जल्दी से फिर मैं आपके और भी मैसेज।
0: कार्यक्रम का पहला गीत है हम आपके हैं कौन फिल्म से। आवाजें हैं SP बालासुब्रमण्यम और

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे बंटी और बबली फिल्म से। आवाजें हैं अलीशा चनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की।

0: मैं हुना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय संध्या के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में।
1: इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही है।

अंतरा मित्रा और सोहम नायक के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय संध्या के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू, और ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। 40 जिलों में अभी मॉनसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास सोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1,553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है।
2: पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश

0: ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं, जो भी हमारा स्कीम है मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं ज्यादा दे दो ज्यादा दे दो ज्यादा दे दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं।
1: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही, इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी, सरकार और सेशल्स के लोगों को धन्यवाद दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑन इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोकभवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्यपाल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, UCC को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, चार कृषि उपजों को हाल ही में मिले GI टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहन और जैविक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों और सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गयी। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गांव क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश कौर ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों दारुश के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, 44 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे

संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडवा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संवाददाता ने बताया कि काम क्षेत्र में होकर वन अधीक्षक अखरोज जैन ने लिया। आपको समाचार संक्षेप में, मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बडिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बडिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले के 7 शासकीय आईटीआई संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरे क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने आज आयोजित टीएल बैठक में वर्षा काल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: कार्यक्रम ग्राम सभा सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को, सभी ग्रामीण भाइयों और बहनों को तरुण मालवी का राम राम। श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा में। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की हमारी छोटी सी अपनी बात से, जिसका विषय हमने लिया है आज का ही दिन। आज का दिन यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आज का दिन जो है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद जो प्रोफेसर थे प्रशांत चंद्र महल नोबिस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। सांख्यिकी का योगदान की बात करें तो आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महल नोबिस का योगदान काफी अमूल्य रहा। और पीसी महल नोबिस प्रथम योजना आयोग के सदस्य भी थे और 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। लोगों में, खासकर युवाओं में, इस बात की जागरूकता फैलाना कि दैनिक जीवन और राष्ट्रीय विकास में सांख्यिकी की क्या भूमिका है, इस उपलक्ष्य में आज का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रोताओं, ये तो हुई एक छोटी सी जानकारी। कार्यक्रम में समय है मनोरंजन का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।
1: मैंने देश प्रदेश से लेकर खंड की लोकगीत मिल है और संगे जान है।

श्रोताओं, अभी हमने सुना ये मधुर लोकगीत अभिराम बर्रे और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में अब बात करते हैं अभी हाल फिलहाल की, कि हम सभी जानते हैं हमारे क्षेत्र में अच्छा खासा मानसून सक्रिय हो गया है और बारिश का मौसम जो है वो लगातार जोर पकड़ते जा रहा है। तो बारिश के मौसम में हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बोनी के अलावा, यानी कि अभी हाल फिलहाल में हम बोनी तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी पेड़ पौधों से संबंधित, वृक्षारोपण से संबंधित या हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत से ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण का विकास हो। तो सबसे पहले बात बात आती है कि हम पानी की रोकथाम कैसे करें, यानी कि हमारे जमीन का जो जल स्तर है उसको किस प्रकार से बढ़ाएं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे खेत के आसपास जैसे नाला हो या फिर छोटी पुलिया हो, तो उस जगह पर हम जो है बोरी बंधान बना सकते हैं या फिर पटिया डैम का निर्माण कर सकते हैं,

आती है कि हम पानी की रोकथाम कैसे करें, यानी कि हमारे जमीन का जो जल स्तर है उसको किस प्रकार से बढ़ाएं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे खेत के आसपास जैसे नाला हो या फिर छोटी पुलिया हो, तो उस जगह पर हम जो है बोरी बंधान बना सकते हैं या फिर पटिया डैम का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कुछ मात्रा में हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं जो धीरे धीरे रिसाव करके हमारी मिट्टी में अंदर जाएगा, जिससे कि हमारे मिट्टी का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज ये हम ये कर सकते हैं कि अपने खेत में या अपने खेत के आसपास ऐसी किसी जगह का चुनाव करें जहां पर जल भराव होता है, यानी पानी जमा हो जाता है, तो उस जगह में भी हम एक छोटे तालाब का निर्माण कर सकते हैं और इस तालाब में हम दोहरा लाभ ले सकते हैं। एक तो हम पर्यावरण के लिए जो है जल स्तर को बढ़ाएंगे, दूसरा इसमें मछली पालन का व्यवसाय करके हम अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे खेत में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर मिट्टी कटाव की स्थिति निर्मित होती है, यानी कि तेज वर्षा की वजह से, यानी तेज बारिश की वजह से मिट्टी बह करके हमारे खेत से बाहर चली जाती है, तो उस जगह पर हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। या अगर वो जगह ऐसी है जहां से आगे की जगह, यानी जो कोई नाला बन रहा हो या फिर नदी बन रही हो, तो इस जगह पर अगर हम बांस की जाली लगा दें तो ये काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि बांस के जो पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इसके अलावा इनकी जड़ जो होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, इसके अलावा ये जो है बहुत जल्दी लग भी जाते हैं, तो हम ऐसी जगहों पर बांस की जालियां लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी मेड़ है, मेड़ पर हम फलदार वृक्ष लगा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हम पर्यावरण को सुधारेंगे, साथ साथ जो है हम इससे आमदनी अर्जित भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोता भाई ऐसे हैं, किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने बागानी फसलों का चुनाव करके रखा हुआ है, तो ऐसे जो भी श्रोता हैं, जो भी किसान भाई हैं, वो बडिंग की या कलम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कलम की तैयारी हमें पूर्वतः करनी होती है। कलम की तैयारी करने से पहले एक चीज ये आती है कि कलम बांधने से पूर्व कलम की हमें तैयारी करनी होती है, यानी उसकी पत्तियां तोड़कर अलग करना होता है, उसके डंठल काट देने होते हैं ताकि उसमें नए पीके फूट सकें, और उसके उपरांत जो है उसको काट कर किसी दूसरी जगह पर हम स्थापित करते हैं। तो अभी हम हाल फिलहाल में कलम की तैयारी कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में जब मौसम में पूरी तरह से नमी आ जाएगी उस समय हम कलम को दूसरी जगह पर विस्थापित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे हमारे कलम के पनपने की जो प्रतिशतता है, यानी कि अगर जितनी भी मात्रा में हम लगा रहे हैं उसमें से कितनी मात्रा पनप रही है, इसकी प्रतिशत मात्रा अधिक हो जाएगी। तो कोशिश करें कि अभी हाल फिलहाल में हम जो है ये सारी तैयारियां करके रख ले। कार्यक्रम में समय है सामयिक चर्चा की, तो बात करते हैं जैविक खाद से अच्छी उपज हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो हम अगर बात करें कि हम पारंपरिक खेती कर रहे हैं और वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, और सालों पहले रसायन का तो कोई नाम नहीं था और कोई जानता भी नहीं था कि रसायन का उपयोग करना है, गोबर खाद एकलौती ऐसी खाद थी जिसका उपयोग करके हम अपने खेतों में अच्छी खासी फसल पैदा करते थे। लेकिन 1967 के दौर में हरित क्रांति के कारण हमें रासायनिक खाद का उपयोग करना शुरू किया, और ये जो रासायनिक खाद थी उस समय की मांग थी, क्योंकि अकाल की वजह से हमें अधिक उत्पादन करना था, उस समय अधिक उत्पादन करना हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमें रसायनों का उपयोग करना पड़ा जिससे हम जो है अधिक उत्पादन कर सकें और लोगों का पेट भर सकें। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पास 2 से 3 साल का भंडारित अनाज है, यानी कि 2 से 3 साल अगर हम एक दाना भी ना उपजाएं तो भी हम अपना पेट भर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश ने करके रखी है। आज बात आती है कि हम गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन करें। गुणवत्ता वाली फसलें यानी कि जिसमें रसायन की मात्रा नगण्य हो, कुछ भी ना हो, जैविक रूप से उपजाई जाए, और ऐसी जैविक फसलों की बाजार मांग काफी अधिक है। आज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मोटे अनाज है जो काफी अच्छे दाम में बिक रहे हैं, जैसे मक्का की बात कर लें, ज्वार की बात कर लें, बाजरा की बात कर लें, या फिर रागी की बात कर लें। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक महामारी झेलने के बाद जब आज हम इस स्तर पर खड़े हैं तो सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य को देखना होगा, और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में सबसे जरूरी चीज है कि हम जैविक पोषण ग्रहित करें, यानी कि हम अगर जैविक खाना खाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, हम रोगों से जल्दी रोग ग्रसित नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम रोग ग्रसित ना हो, और इसके अलावा बात आती है जब भी खाने की यानी कि भोजन की, तो हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए।

जिसमें रसायन की मात्रा न के बराबर हो। तो इसीलिए आज कहा जाता है कि जैविक उपज काफी फायदेमंद है, और जैविक उपज से हम निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बशर्ते मतलब हमें सिर्फ समय देना होगा। 1 से 2 से 3 साल के अंदर में हम आज की स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। यानी कि जितना हम रसायनों के ऊपर निर्भर होकर उपज ले रहे हैं, उतनी ही उपज हमें जो है जैविक रूप से भी मिलेगी। लेकिन उसमें शुरुआती अवस्था में, यानी अगर हम आज जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो हमें उत्पादन थोड़ा सा कम मिल सकता है। इसीलिए हमारे कृषक भाई इस ओर जो है अग्रसित नहीं हो पाते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने पूरे रकबे में जैविक उत्पादन न ले, थोड़े थोड़े रकबे को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। जैसे अगर हमारे पास मान के चलिए 4 एकड़ खेत है, तो उसमें से 1 एकड़ में हम जो है जैविक खेती करें, 3 एकड़ में रासायनिक करें, अगले साल 2 एकड़ में जो है हम रासायनिक खेती करें, 2 एकड़ में जैविक खेती करें। इस प्रकार से हम धीरे धीरे अगर जैविक खेती को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज उत्पादित करेंगे, और इसकी बाजार मांग और बाजार मूल्य काफी हद तक अधिक है। तो बात आती है कि ग्रीष्म ऋतु में जो हमने जैविक खाद तैयार करके रखी है, उसका उपयोग करके आज के दौर में, यानी अभी जो खरीफ की हम बोनी कर रहे हैं, इसमें हम उपयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे किसान भाइयों के लिए काफी फायदे का सौदा है। देखिए, होता ये है कि हम कृषि लागत को जैसे जैसे कम करेंगे, निश्चित रूप से हम फायदे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बात आती है कि हम कृषि लागत को कम कैसे करें। तो कृषि लागत को हम इस प्रकार से कम कर सकते हैं कि जो रसायनों पर, जो कीट नियंत्रण पर, जो रोग ग्रसित पौधे हैं, उन पर होने वाले खर्च को हम कम करें। इसके अलावा जो खाद पर होने वाला खर्च है, उसको भी हम कम करें। तो जैसे जैसे हम अपनी कृषि लागत को कम करेंगे, जो मुनाफा होने का स्तर है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जैविक खाद का उपयोग करें, जिससे देखिए फायदे तो हैं बहुत सारे, लेकिन जो हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद चीज है वो बता दें कि इससे रोग लगने की जो प्रतिशतता है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि कीटों का प्रकोप कम होगा, तो हमें कीट नियंत्रण के लिए जो रसायनों पर खर्च करना है वो भी नहीं करना होगा। इसके अलावा देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आपको बता दी, जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बाजार मूल्य भी अधिक है, कीटों का प्रकोप भी कम होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारे मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी काफी अच्छा बना रहता है। यानी आगे आने वाली फसलों में हमें और कम से कम खाद का उपयोग करना होगा। इसके अलावा इसमें जो उत्पादित अनाज है, उसकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी होगी और उसके बाजार मूल्य भी काफी अच्छे होंगे। इसके अलावा जो हमारे श्रोता भाई ऐसे हैं जो सब्जी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, या गन्ने की फसल लगाकर रखी हुई है, या जो फिर मुख्य फसल लगा रहे हैं, तो इनमें भी हम जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। खासकर हमारे जो सब्जी वर्गीय फसल हैं, इनमें अगर हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो इसकी बाजार मूल्य काफी अच्छे मिलते हैं, गुणवत्ता भी काफी अच्छी होती है, कलर काफी अच्छा बनता है, और इसके बाजार में जो दाम हमें मिलते हैं वो भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो जो हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो सब्जी वर्गीय फसलों का उत्पादन करते हैं, वो निश्चित रूप से एक छोटे से रकबे से शुरुआत करें, जहां पर हम जैविक उत्पादन करें। तो श्रोताओं, ये बात हुई कि हम जैविक खाद से किस प्रकार से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, और जैविक खाद से अच्छी उपज किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम में समय है मनोरंजन का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये मधुर लोक भजन।

श्रोताओं, अभी हमने सुना ये मधुर लोक भजन पन्नालाल गुजेले और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में अब समय है आज की भेंटवार्ता का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। श्रोताओं, आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार, और आज हमारे साथ हैं रिया ठाकुर मैडम जी, कृषि वैज्ञानिक बैतूल बाजार से। तो आइए जानते हैं इनसे पपीता की खेती से

0: संबंधित कुछ बातें। सबसे पहले मैम नमस्कार।
1: नमस्ते
0: मैम, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारी पारंपरिक खेती है उसकी अपेक्षा हमारे किसानों का रुझान जो है वो पपीता की खेती की ओर क्यों होना चाहिए?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। पारंपरिक खेती हम कई वर्षों से करते आ रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि हम कोई लाभ नहीं कमा पा रहे हैं उस खेती से। तो आपने जैसे बात की पपीता की खेती, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो पपीते की खेती है, सबसे पहली बात कि बहुत कम समय में आपको एक अच्छा लाभ दे सकती है, और आप चाहें तो आप पपीते की खेती के साथ कुछ अंतर्वर्तीय फसल भी ले सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ। आप मान के चलें कि साल भर के अंदर आप एक अच्छा मुनाफा पपीते की खेती से कमा सकते हैं।
0: जी, तो हमें ये बताइए कि पपीते की जो खेती होती है उसके लिए हमें खेती की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए?
1: सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगी, और पपीते की खेती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पे मैं बिंदुवार आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार बहुत सारे किसान मेरे पास आते हैं और पपीते की खेती को लेके कई प्रश्न वो मुझसे करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो उन्हें बिल्कुल पता नहीं होती है। तो मैं बिंदुवार कुछ पॉइंट्स हैं उनकी आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि जो उन्नतशील किस्में हैं हमारे पपीते की, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो आपको ये बता दूं कि जो पपीते में जो फूल आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो किस्म होती है आपकी डायोशियस होती है, जिसमें नर और मादा जो पौधे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और एक जो किस्म आती है आपकी गायनोडायोशियस, जिसमें नर व मादा जो फूल होते हैं वो दोनों एक ही पौधे पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप किस किस्म का चुनाव कर रहे हैं, कि जिसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पे आते हैं या नर और मादा फूल एक ही पौधे पे आते हैं। तो कुछ प्रचलित किस्में हैं, तो जैसे पूसा ड्वार्फ है वो डायोशियस किस्म है, पूसा नन्ना है वो भी डायोशियस है। आपको मैं बता दूं एक रेड लेडी जो किस्म है उसमें नर और मादा फूल एक ही पौधे पर होते हैं। इसके अलावा पूसा डेलिशियस एक गायनोडायोशियस वैरायटी है, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो रोप तैयार करते हैं हमारे किसान, तो अभी तरुण भैया से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि कुछ लोग बाफे बना के रोप तैयार करते हैं, तो ये बिल्कुल आप ना करें। आप देखें पपीते का जो बीज है वो हमारा बहुत ही महंगा है, 10,000 से ऊपर ही मिलता है। तो आप ये करें कि आप उसके लिए या तो प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करें, या फिर आजकल बाजार में प्लास्टिक की ट्रे, जिनको हम प्रोट्रे के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा काले कलर की ट्रे आती हैं और वो अलग अलग साइज की आती है। तो सब्जियों के लिए जो ट्रे आती है उनमें छोटे खाने होते हैं, और जैसे आपको पपीते की पौध अगर तैयार करनी है तो वो बड़े साइज की ट्रे आती है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फायदा कि उसमें आप जो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर डाल के जब उस पौधे को तैयार करते हैं तो वो पौधा एक तो आपका स्वस्थ तैयार होता है, दूसरा जब आप उसको निकालते हैं उस ट्रे में से तो उसकी जो जड़ें हैं बारीक जड़ें वो पूरे पौधे के साथ आती हैं, जिससे कि जैसे ही पौधा आप स्थानांतरित करते हैं अपने मुख्य खेत में तो वहां वो जल्दी से जड़ें पकड़ लेता है और जल्दी से अपना भोजन और जल जमीन से ग्रहण करने लगता है। तो आप जब भी रोप तैयार करें तो आप हमेशा या तो प्लास्टिक की थैलियों में या फिर आप प्रोट्रे का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: जी मैम, यहाँ पर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पौध जो हमने तैयार कर लिया है ना, उसका जो स्थानांतरण है हम खेत में करते हैं, तो खेत में स्थानांतरण करने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी?
1: बिल्कुल, इसको एक तो मैं समय का थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। जो पौध हमारे जो स्थानांतरण हमको करना है, तो आप या तो आप जून जुलाई के माह में लगाएं अपना पौध, या फिर आप जो फरवरी मार्च का समय है उस समय का चुनाव करें। इसके बाद आपको ये सावधानी रखना है कि जब आपका पौधा 40 से 50 दिन का हो जाए, करीबन 2 माह का या 20 सेंटीमीटर तक का हो जाए, तभी आपको स्थानांतरण करना है। और इसके साथ साथ आपको जो दूरी है वो भली भांति ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको जो दूरी है जिस दूरी पे गड्ढे करना है वो या तो आप 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर पे कर सकते हैं, या आपको लग रहा है आपकी जमीन अच्छी है पौधा ज्यादा फैलेगा तो आप उस दूरी को 2 बाय 2 मीटर पे ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इतनी दूरी पे गड्ढा खोदना है। और सबसे पहली बात कि अगर आप बगीचा लगा रहे हैं, आप पपीते की खेती कर रहे हैं, तो सिंचाई का साधन होना बहुत ही आवश्यक है। आप बहाव पद्धति से पानी न दें, हमेशा ये प्रयास करें कि जब भी कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे हैं तो आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली का ही प्रयोग करें। अगर उससे आप उस प्रणाली से आप अगर पानी देते हैं तो आप देखें पानी की भी बचत होती है, पौधा स्वस्थ बनता है,

0: बता दूं कि जो हमारा पपीता है वो पानी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, कम पानी भी नहीं चाहिए। तो इस स्थिति में आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं।
1: चलिए मैम, चलते हैं आगे और बात करते हैं कि जो हमारे किसान भाई इच्छुक हैं आने वाले समय में, जैसा आपने बताया कि जनवरी फरवरी मार्च तक लगा सकते हैं अपने खेतों में, तो हमें ये बताइए कि जो गड्ढे की तैयारी है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, जो आप जिस दूरी पे जो गड्ढा खोद रहे हैं, जैसे मैंने बोला 1.5 बाय 1.5 मीटर या 2 बाय 2 मीटर पे आप गड्ढा खोद लें, और उसके बाद इनिशियल जो हमारा रहता है उसमें कम से कम अगर आपको 1 किलो नीम खली मिल जाए तो आप वो डाल लें। इसके साथ साथ गोबर की खाद या केचुआ खाद अगर आपको मिल जाए तो आप वो डाल सकते हैं। करीबन 10 किलो गोबर की खाद, अगर केचुआ खाद मिलती है तो उससे आधी मात्रा, मतलब 5 किलो खाद। और ये आप इतनी तैयारी करके गड्ढे में जब आप मिला देंगे उसके बाद आप पौधरोपण कर सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जब खाद की बात आई है तो अभी जिन लोगों के बगीचे लगे हुए हैं, रनिंग कंडीशंस में है, या पौधे छोटे हैं या बड़े हैं, तो मैं बताना चाहूंगी पपाया का एक डोज होता है जो इनिशियल अगर आपका पौधा 5 माह से ऊपर का हो गया है तो आप करीबन 50 ग्राम यूरिया और 200 ग्राम सुपर और उसके अलावा 25 से 30 ग्राम पोटाश, ये आपको पर पौधा प्रति 2 माह के अंतराल पे रिपीट करना है। ध्यान रहे क्योंकि पौधा बहुत ऐसी फसल है जो बहुत जल्दी पोषक तत्व खींचती है, क्योंकि आप ये मान के चले 3 से 4 माह में आपका जो पौधा है वो खत्म हो जाएगा आपको फ्रूटिंग देके। तो ये इनिशियल जो है ये आपको डोज फॉलो करना है और हर 2 माह पे इसको रिपीट करना है। इसके साथ गोबर की खाद वो आपको हर 6 माह में देनी है और उसकी जो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप कम से कम 10 किलो तो दे ही, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं।
1: जी, इसके अलावा हमें एक चीज और बताइए कि इसमें जो कीटों का प्रकोप होता है या रोग जो आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनके लिए हमें पूर्वतः सावधानी क्या रखनी चाहिए।
0: ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या होता है, जो हमारे किसान भाई हैं अंतर्वर्ती फसल तो जानते हैं पर ये नहीं जानते कि कौन सी फसल के साथ हमको कौन सी फसल लगाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने पपीते के साथ टमाटर लगा दिया तो आपका बगीचा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, या आपने मिर्ची लगा दी तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो कीट आपके मिर्च पे आते हैं वही कीट आपके पपीते को भी प्रभावित करेंगे। तो हमेशा सबसे पहला ये ध्यान रखें कि बहुत ही कम समय की फसल है, 3 से 4 साल अगर आप अंतर्वर्ती फसल ना लगाएं तो ही बेहतर है। और अगर आपको लगाना है तो आप दलहनी फसल लगा सकते हैं, आप मटर लगाएं या आप मेथी लगाएं, आप ऐसी चीजों को इसके बीच में लगा सकते हैं तो कीटों का प्रकोप कम होगा। इसके साथ साथ अर्धगलन की समस्या आती है, तो ये जो समस्या है ये शुरुआत में आपको परेशान करेगी। जब आप नर्सरी में पौधा तैयार करेंगे तो तब आप 2 ग्राम कार्बेंडाजीम को 1 लीटर पानी में घोल के उसको अच्छे से पौधे को ड्रेंच कर देंगे तो ये अर्धगलन की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करूंगी लीफ कर्ल, जैसे चुड़ला मुड़ला आपका टमाटर मिर्ची में आता है ऐसा ही आपका पपीते में भी आता है। तो इससे बचने के 2-3 तरीके जो हैं वो आप अगर शुरू से करेंगे तो ये आपको बहुत कम परेशान करेगा। सबसे पहला, बॉर्डर क्रॉप के रूप में आप मक्का लगाएं, किसी भी दो तरफ अपने बगीचे के मक्का लगा दें, ऐसी बाउंड्री बना दें, आप दीवार जैसी मक्के की खड़ी कर दें। तो जब आप रोप लगा रहे हैं, अपना पपीता लगा रहे हैं, उससे 15 दिन पहले आप उस खेत के दो तरफ मक्के की बॉर्डर बना दें। दूसरा, पीले चिपचिपे प्रपंच जो आते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप, आप उनका प्रयोग करें। तीसरा, आप ये ध्यान रखें कि चाहे सिम्टम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, नीम तेल ऐसी एक चीज है कि जो कभी नुकसान नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। तो आप हर 15 दिन के अंतराल पे या 20 दिन के अंतराल पे एक बार नीम तेल का आप स्प्रे करते रहें, तो इससे आपका जो चुड़ला रोग है, लीफ कर्ल जिसको बोलते हैं, वो नहीं आएगा। इसके अलावा एक और समस्या आती है, जड़ तथा तनों का सड़ना, जनरली बहुत देखा गया ये, पर ये उस स्थिति में होता है कि जब आपके पौधे के आसपास ज्यादा पानी रुक रहा है या वहां पे पानी भर रहा है, गलने की समस्या शुरू होती है धीरे धीरे और पूरा पौधा आपका एक साथ गिर जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी कहीं गलन दिख रहा है आपको तने के पास जहां से जमीन से पौधा टच है, तो आप थोड़ा सा वहां पे खुदाई करके और किसी भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का आप वहां पे ड्रेंचिंग करेंगे तो वो चीज कंट्रोल हो जाएगी।
1: इसके साथ ही हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब पौधों में फूल आते हैं तो ये देखा जाता है कि जो पौधे के फूल हैं वो गिरने लग जाते हैं।

0: कारण से होता है?
1: देखिए, पपीते में जो मैंने पहली बात बोली नर और मादा फूल, अगर वहां पर पराकरण नहीं होता है तो ये समस्या देखने में आती है, क्योंकि फ्रूट सेट नहीं हो पाता है। हो सकता है कोई पौधा आपका नर है और उसमें फूल आ रहे हों और उस टाइम कोई भी मादा पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो वो फूल वेस्ट हो जाएगा। या आपकी मादा पौधे में फूल आ रहे हैं और वहाँ आसपास कोई भी नर पौधा नहीं है, तो वो पॉलिनेशन नहीं हो पाता, फ्रूट सेट नहीं होता और वो झड़ जाता है। तो उसके लिए हमको ये देखना है कि जो नर और मादा जो पौधे हैं वो एक सही प्रतिशत में रहें। मतलब आप ये मान के चलें कि अगर 100 पौधे हैं तो उसमें से आपके 10% जो पौधे हैं उसमें नर पौधे होने चाहिए।
0: मैम, इसके साथ हमें ये बताइए कि जो हमारे कृषक भाई हैं, इनमें एक भ्रांतियां हैं कि जब पौधे में बहुत अधिक मात्रा में पपीते के फल लगते हैं तो वो उस कुछ फलों को तोड़ देते हैं। उनका मानना ये होता है कि पौधे गिर जाएंगे या फल बड़ा नहीं हो पाएगा, क्या ये सही है?
1: एक्चुअली इसमें ये है कि फ्रूट बियरिंग हैबिट जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपने कौन सी किस्म का चुनाव किया है। तो ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि फ्रूट लोड ज्यादा हो जाएगा तो आप कुछ जो फ्रूट्स हैं उनको तोड़ सकते हैं अर्ली स्टेज पे, जिससे कि फ्रूट साइज अच्छा बने और शेप आए। जनरली ऐसा गिरने वाली तो बात नहीं होती है, बट हाँ मैं लोड की बात करूंगी। थोड़ा सा लोड अगर हम कम करते हैं पौधे का तो जितने आपके फ्रूट्स हैं वो शेप प्रॉपर लेंगे और उनका वेट सही आएगा, तो वो काम आप कर सकते हैं। पर आप देख लें कि पहले हमने किस किस्म का चुनाव किया है और क्या उसकी बियरिंग कैपेसिटी है पौधे की, कि वो बियर कर सकता है कि नहीं। और अगर जो आप गिरने की बात कर रहे हैं तो वो जनरली ऐसे पौधे नहीं गिरते, अगर नमी है या कुछ है तभी वो ऐसे ज्यादा गिरेगा, अगर जड़ें मजबूत नहीं हो पाएंगी तो, बाकी ऐसे पौधे नहीं गिरते।
0: मैम, इसके साथ अगर कोई और ऐसी जानकारी जो हमारे कृषक भाइयों के लिए हितकारी हो तो वो आप हमें बता दीजिए।
1: बिल्कुल, उत्पादन की मैं बात करना चाहूंगी तो अगर आप पपीते का उत्पादन अगर करते हैं तो आप मान के चलें 40 से 50 किलो अगर कम से कम हालत में प्रति पौधा आपको ये यील्ड मिलेगी। और इसके बाद में एकड़ में अगर बात करूं तो 25 से 30 टन प्रति एकड़ आप इसकी उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ये बता दूं कि 9 से 10 माह बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और 3 से 4 सालों की ये फसल है, इसके बाद आप इसको डिस्ट्रॉय करके नया बगीचा लगा सकते हैं।
0: मैम, आपने इतनी अमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, अभी हमने सुनी ये जानकारी जिसमें हमने जाना कि हम किस प्रकार से पपीते का उत्पादन कर सकते हैं। निश्चित रूप से पपीते की फसल हमारे किसान भाइयों के लिए काफी हितकारी और लाभप्रद है, क्योंकि हमारे कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जो परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं और वर्षों से एक ही प्रकार की खेती कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें कुछ वैज्ञानिक रुख अख्तियार करना होगा जिससे हमें निश्चित रूप से अच्छी आमदनी अर्जित होगी। तो पपीता की फसल जो है इसी क्रम में एक बहुत छोटा सा उदाहरण है जिसका उपयोग करके निश्चित रूप से हमारे किसान भाई काफी अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। श्रोताओं, श्रृंखला के अंतर्गत बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने लंबी अवधि की फसल यानी कि या तो बागीचा फसल लगा रखी है या फिर उन लोगों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में यानी पिछला जो समय बीता है ग्रीष्म ऋतु का, इस समय पानी की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हम नहीं कर पाए, और होता यह है कि जब पानी की पर्याप्त प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो हमारे किसान भाई खाद का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब बारिश शुरू हो जाती है तो इस समय वो इकट्ठा खाद का उपयोग कर लेते हैं। तो ये गलती हमें कतई ना करनी है, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम टुकड़ों में खाद दें। जैसे अगर हम गन्ने की फसल में खाद दे रहे हैं, हमने पिछले समय में अगर खाद नहीं दिया है तो इकट्ठे खाद देने की बजाय हमें ये करना चाहिए कि हम धीरे धीरे उसको टुकड़ों में भाग करके खाद दें, जिसका फायदा हमें ये होगा कि हम जो खाद डाल रहे हैं वो सीधे हमारे पौधों तक पहुंचेगी, निश्चित रूप से वो खाद जो है वो व्यर्थ नहीं होगी। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमने अपने श्रोताओं को बताई, निश्चित रूप से ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए काफी फायदेमंद होगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आज के बाजार भाव का। तो सोयाबीन पीला न्यूनतम रहा 4500 रुपए, अधिकतम रहा 6900 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 6650 रुपए। चने के लिए न्यूनतम रहे 4000 रुपए, अधिकतम रहे 5465 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 5300 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का के लिए न्यूनतम रहे 2075 रुपए, अधिकतम रहे 2351 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 2250 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं के लिए न्यूनतम भाव रहे 2410 रुपए, अधिकतम रहे 2600 रुपए और इसका प्रचलित भाव रहा 2510 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों के लिए न्यूनतम रहे 6201 रुपए, अधिकतम रहे 7000

₹1 और इसका प्रचलित भाव रहा ₹6400 प्रति क्विंटल। मसूर के लिए एक ही भाव ₹5100, तुअर के लिए न्यूनतम रहे ₹6051, अधिकतम और प्रचलित भाव रहा ₹6551, गुल्ली के लिए न्यूनतम रहे ₹5311, अधिकतम और प्रचलित ₹5360, मूंग के लिए न्यूनतम रहे ₹6650 और इसका प्रचलित भाव रहा ₹7251 और अधिकतम मूल्य रहा ₹7251। श्रोताओं, आज के बाजार भाव के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी। तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त तरुण मालवी को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी ग्राम सभा। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम सुन रहे श्रोताओं को नमस्कार।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे आम आदमी के मौलिक अधिकारों की, जिसे संविधान द्वारा दिया गया है। यदि किसी सरकारी अधिकारी या संस्था द्वारा आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, तो भारत का संविधान आपको और हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय या कोर्ट द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश, जो किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोई विशेष कार्य करने या ना करने का निर्देश देता है, इसे रिट कहते हैं। श्रोताओं, संविधान में मुख्य 5 प्रकार के रिट होते हैं, वो अधिकार क्या होते हैं, जानेंगे इस गीत के बाद।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और हम चर्चा कर रहे हैं रिट विषय पर। श्रोताओं, संविधान के पांच प्रकार के रिट कुछ इस प्रकार हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए, या ये पुलिस द्वारा बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है। हमारा दूसरा रिट होता है परमादेश, यानी मैंडेमस। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या निचली अदालत अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करती है, तब न्यायालय द्वारा ये रिट जारी किया जाता है। हमारा तीसरा रिट होता है प्रतिषेध, यानी रोकना। ये रिट किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन आने वाले न्यायालयों को जारी किया जाता है, ताकि अधिकारियों को अपने क्षेत्र से बाहर काम करने से रोका जा सके। चौथा रिट है उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या मंगवाना। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुनाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसके जरिए उस मामले के रिकॉर्ड मंगवाकर उस फैसले को रद्द कर सकता है। हमारा पांचवा और अंतिम रिट है अधिकारी प्राश्चा, या कि क्यूओ वारंटो। किसी प्राधिकार से जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लेता है, तब न्यायालय इस रिट के जरिए पूछता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहे हैं। अनुराधा पौडवाल और बप्पी लहरी की आवाजों में ये गीत है थानेदार फिल्म से।

श्रोताओं, भारतीय संविधान में रिट की शक्ति को ब्रिटेन के कानून से लिया गया है और संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट रिट जारी करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये थी आज की हमारी छोटी सी जानकारी कि कैसे हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं इस विषय पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और सारिका कपूर की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा बैतूल के अंतर्गत बैतूल जिले में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाएं। श्री बालाजी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के प्राचार्य पी.आर. परेश शाह से सुमन जी की चर्चा।

हमारा बैतूल। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम हमारा बैतूल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र देश के विकास और उन्नति में एक बहुत अहम रोल अदा करता है, तो हमारे जिले बैतूल में इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या इस दिशा में आगे हो सकता है, इसी विषय पर आज हमारे बीच स्टूडियोज में मौजूद है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्राचार्य डॉक्टर

0: जी शाह जी, सर आज के इस प्रोग्राम हमारा बैतूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, साइंस और टेक्नोलॉजी देश की उन्नति और विकास के लिए कितने इम्पोर्टेंट है?
1: धन्यवाद सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही हम देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं, जैसे नए उद्योग, व्यवसाय, रोजगार भी हम लोग पैदा कर सकते हैं, जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग हम कृषि क्षेत्र में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा में भी इसका बहुत उपयोग होता है, जिससे हम लोग

0: जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को निपटने के लिए भी हम लोग इस पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है।
1: तो इस तरह अलग अलग फील्ड्स में हम इस क्षेत्र का उपयोग करके लाभ ले सकते हैं।
0: यस सर।
1: हमारे जिले बैतूल की अगर हम बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र में कितने अवसर उपलब्ध हैं?
0: अच्छा प्रश्न है आपका। ये बैतूल हमारा आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारा एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसे अभी जस्ट आपने इंट्रोडक्शन दिया, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इस कॉलेज में हमारा बीटेक कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, दो कोर्सेज अवेलेबल है। बीटेक कोर्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज उपलब्ध है। इस कोर्सेज के लिए हमारे विद्यार्थियों को 12वीं साइंस करना होता है, जिसमें वो जेई की एग्जाम एक होती है, एंट्रेंस एग्जाम, वो एग्जाम देके उनका प्रवेश कर सकते हैं। यदि जेई का एग्जाम नहीं भी दिया तो एक सेकंड राउंड में उनको एक आप प्रवेश कर सकते हैं।
1: और इस तरह के कितने कोर्सेस हैं जिनका संचालन आपके यहाँ से हो रहा है?
0: ये जो मैं आपको 5 कोर्सेज बताया, इसके अलावा हमारे इधर पॉलिटेक्निक कोर्स भी है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेस रखे हैं, जिसके लिए बच्चे ने यदि 10th किया है तो वो एडमिशन ले सकता है।
1: अब सर एडमिशन लेने का प्रोसीजर भी बता दीजिए।
0: हमारा ड्यूटी के थ्रू एक हमारा एक पोर्टल होता है, जिस पोर्टल में बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें अपने अपने कॉलेज के ऑप्शंस होते हैं और कॉलेज के अलावा ब्रांच के ऑप्शन उनको डालने पड़ते हैं, और यदि हमारा ऑप्शन लग गया तो हमारे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। यदि बच्चा उससे भी छूट गया तो कॉलेज लेवल पे भी वो डायरेक्ट कॉलेज से अप्रोच कर सकता है। और ये जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, बालाजी इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का जो कोर्स है, और आप भोपाल इंदौर के कोर्सेज करके, सभी का सिलेबस एक ही होता है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में RGPV टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसकी वजह से सभी का सिलेबस एक ही होता है। जो वहाँ पढ़ाया जाता है वो यहीं भी पढ़ाया जाता है।
1: तो इस तरह अगर आप इस क्षेत्र की पढ़ाई बैतूल में करते हैं या भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिलेबस एक ही है।
0: कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
1: ये तो हुई एडमिशन के प्रोसीजर की बात। अब सर हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि कौन से स्टूडेंट्स, किस तरह के स्टूडेंट्स आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है?
0: देखिए, हमारे इधर 12वीं साइंस जिसने किया है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिसने लिया है, वो एलिजिबल है बीटेक कोर्स के लिए। और इसके अलावा पॉलिटेक्निक में सिर्फ 10वीं जिसने पास किया वो एलिजिबल है। पर ये बच्चे हमारे इधर आ सकते हैं। और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो हमारे कॉलेज में आंवला, मुलताई, सारणी, यहाँ तक कि पांडुना से भी बच्चे पढ़ने आते हैं।
1: मतलब जिले भर से बच्चे आपके यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडमिशन ले रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं। अब सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैतूल के युवा अगर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कितने अवसर उपलब्ध हैं या उसके लिए ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें भविष्य में रोजगार के सुलभ अवसर उपलब्ध होंगे?
0: ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि क्या एक बार पढ़ाई खत्म होगी उसके बाद यदि हमें आगे हमारा करियर बनाना है, तो करियर बनाने के लिए मैं आपको 3 या 4 ऑप्शंस दे सकता हूँ। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन भी बच्चा कर सकता है। यदि उसे ME/M.Tech करना है बीटेक के बाद, तो ME/M.Tech के लिए गेट एग्जाम देके उसमें एडमिशन ले सकता है। यदि उसको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो MBA भी कर सकता है। MBA के लिए को हमारी कैट के एग्जाम देके वो MBA में एडमिशन ले सकता है। यदि उसे बाहर जाना है, MS करना है, तो JRE, TOEFL वगैरह उसके रिलेटेड एग्जाम देके वो बाहर जा सकता है। ये हायर एजुकेशन यदि उसको करना चाहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना है, UPSC एग्जाम देना है, IAS के एग्जाम देना है, ये भी उसके लिए भी वो एलिजिबल है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब है। अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसको बिजनेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। यदि हम रोजगार की बात करते हैं तो स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ हमने पढ़ाई कर लिया, मार्कशीट ले लिया, उससे काम नहीं चलेगा। उसको एक हमारे जो विद्यार्थी को अलग से अपना एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है। यदि उसका कम्युनिकेशन अच्छा है तो अपना नॉलेज वो सामने वाले को ट्रांसफर कर सकता है। और इसके अलावा अभी इमर्जिंग फील्ड चल रही है, हर जगह हमारा AI चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रही है, तो इमर्जिंग फील्ड में जैसे AI है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, उसको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, कोडिंग आना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे विषय में उसकी रुचि होना चाहिए, तो उसको अच्छे

0: कंपनी में अच्छी जगह जॉब्स मिल सकते हैं।
1: आपने अभी कुछ देर पहले एआई की बात की, ये एआई और ऑटोमेशन क्या है और कितना असर डालेगा आने वाले दिनों में ये इस क्षेत्र पर?
0: देखिए सर, ये एआई बोलते हम लोग जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आज हर चीजें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: इसके फायदे तो है और थोड़े बहुत नुकसान भी है, बट हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको एआई कहते हैं, कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है।
1: अच्छा,
0: इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी मशीनों और सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है जो इंसानों की तरह सोच सके, चीजों को समझ सके, समस्याओं का सुलझा सके और अपने अनुभव से सीख सके। सरल शब्दों में कहे तो यह कंप्यूटर या मशीनों को इंसानी दिमाग जैसा क्षमता देने की टेक्नोलॉजी है।
1: अच्छा,
0: जिससे हम लोग हमारा प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा सकते हैं, हमारा काम आसान कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ये चीजें तो होगी, बट थोड़ा सा असर यदि हमारा जो विद्यार्थी वो स्किल्ड नहीं है तो उसको जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे।
1: अच्छा,
0: उसको स्किल्ड रहना जरूरी है।
1: अच्छा, स्किलफुल होना बहुत जरूरी है।
0: एआई
1: बस आपकी मदद कर सकता है।
0: अच्छा, वो इंसानों ने बनाया हुआ है और इंसानों जैसा उसको सोचने लगा है।
1: सरकार मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स पर बहुत जोर दे रही है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है?
0: अभी जैसे आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो मेक इन इंडिया में जैसे सरकार चाहती है कि हमारा पैसा हमारे देश में रहे, ताकि हमारी जो डॉलर की कीमत कम से कम हो। इसके लिए डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे क्षेत्र में हम लोग मेकिंग इंडिया का काम चल रहा है।
1: अच्छा,
0: और यदि आप स्टार्टअप की बात करें तो डीप टेक, फिनटेक, हेल्थ टेक या ड्रोन टेक, ये क्षेत्र भी उसमें शामिल है।
1: अच्छा, तो ड्रोन टेक भी शामिल है, क्या है ये ड्रोन टेक?
0: सर, ड्रोन टेक्नोलॉजी में जैसे ड्रोन का उपयोग हम लोग कैसे किया जाए, उसको हमें कृषि क्षेत्र में कैसे उसका उपयोग हम कर सके, तो कृषि क्षेत्र में क्या होता है सर, हम जो यदि सटीक कृषि क्षेत्र में उसका यूज करना है तो छोटे किसान सटीक कीटनाशक छिड़काव और फसल की निगरानी के लिए कृषि ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। उसमें एक आईओटी टेक्नोलॉजी के एक सेंसर्स होते हैं।
1: अच्छा,
0: उस सेंसर्स की मदद से मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों के स्तर पर निगरानी कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: और अभी हमने देखा युद्ध में भी ड्रोन का यूज हो रहा था,
1: बिल्कुल,
0: ताकि हम लोग प्रॉपरली अटैक कर सके।
1: सर, ये अक्सर देखने में आता है कि लोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को एक ही समझ लेते हैं, एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को कैसे समझाएंगे?
0: आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो ये साइंस और मैथमेटिकल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है।
1: अच्छा,
0: जिससे डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए मदद होती है और ज्यादातर थ्योरी पर फोकस किया जाता है, जबकि टेक्नोलॉजी जिसे हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, जिससे उन डिजाइन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया जाता है और हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन पर उसका ध्यान केंद्रित किया जाता है।
1: अच्छा,
0: तो डिफरेंस ये है, उसमें थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल अप्रोचेस ज्यादा है।
1: सर, अभी कुछ देर पहले आपने स्किल्स की बात की थी, तो जो युवा आज इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें डिग्री के अलावा और किन बेसिक स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
0: अभी क्या है सर, जैसे कॉलेज में थ्योरी पढ़ाई जाती है, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स भी लिए जाते हैं, बट अब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, हमारा मार्केट में क्या चल रहा है, इसका नॉलेज हमारे विद्यार्थी को चाहिए। तो उसका जो बीच में जो ब्रिज है, मतलब थ्योरी या अपना एजुकेशन और इंडस्ट्री, इसका जो ब्रिज है वो हमें आइडेंटिफाई करना है।
1: अच्छा,
0: तो थ्योरी में हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें कौन से फील्ड में जाना है, उसके हिसाब से हमें तैयारी करना होगा। यदि कोई बच्चा चाहता है मुझे आईओटी क्षेत्र में जाना है, तो उसको आईओटी क्षेत्र की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो कोई चाहता है कि मुझे साइबर सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़े और उसके कोर्सेज करें। जैसे हमारा जो कोर्स है वो AICTE से रन होता है, AICTE से चलता है, तो हमारे AICTE में NPTEL करके एक होता है, वो एक NPTEL के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज किए जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो यदि बच्चा पढ़ाई के अलावा वो कोर्सेज करता है तो उस कोर्सेज का उसको फायदा होगा कि अपनी स्किल बढ़ाएगा। हम लोग तो कोई एक सब्जेक्ट लिया जाता है जिसमें एग्जाम देके वो निकल जाता है, पर उसका ज्यादा नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, तो उसको उस

0: पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अपने को पढ़ाई करनी होगी और डीप पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: तब तब जाके वो उसके स्किल बढ़ेगी और उसको अच्छा क्षेत्र मिलेगा।
1: सर, इस समय जो बच्चे आपके पास इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने आते हैं, वो किन नए विषयों पर रुचि ले रहे हैं?
0: यस यस, अभी कैसे सर, जैसे इसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी करके अभी आप देख रहे हैं, सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब इनका जो प्रोडक्शन भरपूर हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी प्रोडक्शन, घर घर पे आप सोलर पैनल आपने देखे हैं, सोलर पैनल हमने बिठाए हुए हैं, तो जो सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम का उपयोग हम बिजली का बिल शून्य करने के लिए यूज करते हैं, उसी तरह से गांव में जो दूषित पानी का को भी हम शुद्ध करने के लिए एक शून्य बिजली वाला जल फिल्टर लगा के उसका यूज कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में इतना काम चल रहा है जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की भरपूर जरूरत है।
1: अच्छा,
0: तो वो तो कभी काम बंद होना नहीं है और हर जिले में मेगावाट के 200 मेगावाट, 400 मेगावाट बिजली पैदा करना गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है।
1: अच्छा,
0: आपने एक बाचा गांव का नाम सुना होगा?
1: बिल्कुल।
0: हाँ, बाचा जो गांव है हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर पे इटारसी रोड पे,
1: बिल्कुल,
0: वहाँ पे कुछ साल पहले वहाँ पे बिजली ही नहीं थी गांव में।
1: अच्छा,
0: तो उस गांव में हमारे शासन ने 75 घर है, सभी घर में सोलर सिस्टम बिठाई है।
1: अच्छा,
0: और सोलर सिस्टम की वजह से उनके घर में के सभी अप्लायंसेस, टीवी, फैन, ट्यूब, चूल्हा, घर का चूल्हा, सभी हमारा सोलर सिस्टम पे चल रहा है।
1: अच्छा,
0: तो आप देख सकते हैं, तो सोलर सिस्टम जो हमारी यूज हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर हमारी घर घर में यूज हो रही है, जिससे हमारा जो रोजगार है वो कभी बंद होने वाला नहीं।
1: सर, अंत में जो युवा, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: जैसे आपको मैंने पहले बताया सर, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे शहर पर बहुत असर कर रहा है, जैसे छोटे शहर है वो डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहे हैं, सभी के हाथ में मोबाइल है,
1: बिल्कुल,
0: हम चुटकी भर में हमारा काम कर लेते हैं, जिसमें हम बात करते हैं AI संचालित कृषि, ड्रोन टेक्नोलॉजी, अभी जस्ट बात किया मैंने, IoT, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीमेडिसिन, जैसे हम लोग मेडिकल क्षेत्र में इसका काम करते हैं, डिजिटल एजुकेशन, जैसे हम लोग क्लास में स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं, और जिससे हमारे बच्चे सभी चीजें, डिफिकल्ट चीजें आसानी से समझ लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग हमारे टेक्नोलॉजी का यूज हमारे क्षेत्र में कर सकते।
1: तो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम हमारे क्षेत्र की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, ये कहना है श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर परेश जे शाह जी का, जिन्होंने आज कार्यक्रम हमारा बैतूल में हमसे बातें की बैतूल में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में संभावनाएं इस विषय पर। आज के इस कार्यक्रम में इन अहम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम हमारा बैतूल, जो केंद्रित था बैतूल जिले में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में संभावनाएं इस विषय पर। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमारा बैतूल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री

0: ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकट के क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारे संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन

0: गया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर 94.54 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रूपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्यासा सावन फिल्म के गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब रविंद्र जैन के गीत संगीत निर्देशन में सुनते हैं चित्त चोर फिल्म का गीत, आवाजें येसुदास और हेमलता की।

लीजिए अब सुनिए राजा मेहंदी अली खां का लिखा मेरा साया फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत मदन मोहन का।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
0: विचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आडिबामन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे हैं कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। तो मिसाल गा गए वो आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आप

0: आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, एक मिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाज़ें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज़, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज़ मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफ़ी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज़ तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का मतलब कई साल मुझे कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा।

भूलो से, तो ये शुरुआत तो मैंने की और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: विविध भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहाँ भी।
1: तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने
2: किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
1: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उसकी सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

0: शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा, तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।
1: ले गई

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार

FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम का पहला मीत हमने शामिल किया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। फिल्म का नाम है सावन को आने दो। आवाजें हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की।

0: जी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: प्रदीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ जी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम के अगले श्रोता है इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। अजनबी फिल्म का ये गीत है लता जी और किशोरदा की आवाज में।

कार्यक्रम के अगले श्रोता हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे।

लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत है सच्चा झूठा फिल्म से। सुनना चाहते हैं खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद्य।

आमला ग्राम अंधारिया से अगले श्रोता हैं वीरेश झाड़े, योगेश, चित्रेश और नवदीप झाड़े। फिल्म का नाम है द ट्रेन, स्वर है लता जी के।

और अनीता वरकड़े। इन श्रोताओं के लिए पेश है आपकी कसम फिल्म का ये गीत, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

इस गीत के साथ ही आपके मीठे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं अदनान सामी और आशा भोसले।

सुगम संगीत कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आज कार्यक्रम में आवाजें हैं जगजीत अदनान सामी और आशा भोसले की।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं जगजीत सिंह।

अदनान स्वामी के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं।

0: के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीब आबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने आज पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में अपने महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshney and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjit Maninder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit, recipients of the Uttam Yudh Seva.

0: in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
1: FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।